0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव में 15 से 20 लोग सवार थे। ये सभी एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2,00,000 रुपए और घायल को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल होंगी। इस मेले का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। संस्कृति मंत्रालय आज से नई दिल्ली में बृहत्तर भारत, विश्व में भारत के सांस्कृतिक संबंध विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। ये सम्मेलन बृहत्तर भारत परिषद की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस सम्मेलन में शामिल होंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान भारत के साथ दुनिया के विभिन्न देशों के ऐतिहासिक और वर्तमान सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज विशेष अभियान के 6 चरण के अंतर्गत 1 दिन का स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे का विशेष अभियान चलाएगा। यह अभियान 2 से 31 अक्टूबर तक चल रहे विशेष अभियान के क्रियान्वयन चरण का हिस्सा है। अभियान के अंतर्गत कार्यस्थलों पर श्रमदान के माध्यम से सफाई, स्वच्छता अभियान और ई कचरे के निपटान जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है और व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं और व्यापार समझौते को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से आकलन कर उनमें आवश्यक बदलाव करने होंगे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा अपनाने के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की।
1: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े संकटों का सामना करने में सक्षम, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के पीड़ितों, उनके परिवारों और प्रभावित देशों की सरकारों के प्रति गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। साथ ही आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: कांगो में इबोला के प्रकोप से अब तक 9,000 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 4,381 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण 7 प्रांतों के 65 स्वास्थ्य क्षेत्रों तक फैल चुका है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने चिंता जताई है कि समुदायों में संक्रमण फैलना जारी है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने बैंक ऑफ अमेरिका पर मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन के लिए $1,20,00,000,000 का जुर्माना लगाया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये उसके इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा जुर्माना है। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदाइरा को हराया। वहीं किदाम्बी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर का सामना करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध।
1: 3 दिवसीय सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान एकत्रित होंगे। इस सम्मेलन में भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों तथा विश्व के विभिन्न देशों के साथ उसके जुड़ाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान सहित विभिन्न देशों के प्रतिभागी साझा सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत आदान प्रदान से जुड़े विषयों पर होने वाली चर्चाओं में योगदान देंगे। यह सम्मेलन ग्रेटर इंडिया सोसाइटी की स्थापना के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस संस्था की स्थापना आज ही के दिन 1926 में कोलकाता में भारतीय विद्वानों की एक पीढ़ी द्वारा की गई थी, जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में जुड़े थे। सम्मेलन के दौरान एशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत शीर्षक से एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की दो दिन की यात्रा पर आज विजयवाड़ा जाएंगी। राष्ट्रपति आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं ग्रामीण उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प और क्षेत्रीय खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन करेंगी। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा के साथ संपन्न हो गई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित हर तरह के आतंक की कड़ी निंदा की है।
1: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े, सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। दिल्ली घोषणा में मानव तस्करी, मादक पदार्थों, नशीले पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और धन शोधन की रोकथाम से जुड़ी कार्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया गया। घोषणा में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता से संबंधित बिम्स्टेक संधि को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी बल दिया गया। इस संधि पर मार्च 2022 में कोलंबो में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी है और समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। उन्होंने कहा है कि हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों का नए सिरे से आकलन कर आवश्यक बदलाव करने होंगे। चीन के संबंध में उन्होंने कहा है कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता भंग होने पर द्विपक्षीय संबंधों पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। श्री जयशंकर ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होने के साथ दोनों देशों के संबंध भी सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल करने में सफल रहे हैं। रूस से संबंधित एक अन्य सवाल के जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत ने कभी ऐसा कोई संकेत नहीं पाया है कि रूस से खरीदे जा रहे किसी भी सामान में चीनी तकनीक शामिल है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस का झुकाव एशिया की ओर अधिक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि रूस के पास कई विकल्प होना भारत और पूरी दुनिया के हित में है। इस संदर्भ में भारत रूस के लिए एक स्वाभाविक विकल्प है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले सप्ताह भारत आएंगे। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। वे भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की मजबूती, क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियों पर विचार विमर्श तथा ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव पर लगभग 20 लोग सवार थे, जो एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे।

0: लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन की इस सोच से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र जैसी परियोजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को धरातल पर उतारा जा रहा है।
1: भारत के अधिकांश औद्योगिक शहर पहले विकसित हुए, बाद में वहाँ बुनियादी सुविधाएं पहुँची। धोलेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल है, जो खंबात की खाड़ी के पास एक ऐसी ग्रीन फील्ड सिटी है जहाँ कोई भी प्लॉट बिकने से पहले सड़क, पानी, बिजली और फाइबर जैसी सुविधाएं पहुँचाई गई है। धोलेरा के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरने को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: हमें धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है। ये शहर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। धोलेरा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार हो रही है। ये रीजन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए अर्ली मूवर एडवांटेज दे रहा है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जमीन पूरी तरह तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है और विजन लॉन्ग टर्म है।
1: स्मार्ट सिटी के विस्तार और इसके तीव्र गति से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डालते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
3: धोलेरा स्मार्ट सिटी का विकास अंदाजन 920 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे इमर्जिंग सेक्टर की इंडस्ट्रीज आ रही है और उसके लिए सरकार ने हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे के निर्माण से कनेक्टिविटी आसान हो गई है और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम अंतिम दौर में है। आने वाले दिनों में धोलेरा देश की पहली स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में स्थापित होगी।
1: ऐतिहासिक समुद्री विरासत से लेकर भारत के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग भविष्य तक धोलेरा दूरदर्शी योजना और विकसित भारत के संकल्प का एक अनूठा प्रतीक है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह दिखने लगा है। आज चतुर्थी पर शहर में हर्षोल्लास का माहौल है। रंग बिरंगे पंडाल, जगमगाती रोशनी और ढाक की गूंज से पूरा शहर उत्सवमय हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और तैयारियां जोरों पर हैं। कई लोग अभी से पंडालों में घूमने और त्योहार की खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और स्थानीय प्रशासन यातायात व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। बंगाल के लोगों के लिए दुर्गा पूजा महज एक त्योहार नहीं, बल्कि खुशी और परंपरा और आपसी मेलजोल का अवसर है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैच की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदायरा को हराया। अगला मुकाबला उनका जर्मनी की यमोन ली से होगा। वहीं किदांबी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर से खेलेंगे। पुरुष डबल्स में आज सात्विक साईराय रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी तथा महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: PCP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
6: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद मुकेश। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, भारत वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जनसत्ता की सुर्खी है, भारत किसी की कीमत पर नहीं दुनिया के साथ विकास करता है। लोकसत्य का शीर्षक है, दुनिया को जोड़ने की ताकत रखता है भारत। 12 वर्षों की आर्थिक नीतियों में सशक्तिकरण पर रहा जोर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, दुनिया में तनाव के बीच आईएमएफ ने बढ़ाया भारत की ग्रोथ का अनुमान, आगे भी विकास दर तेज रहेगी। पत्र के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी में बना हुआ है। अमर उजाला के अनुसार, त्योहारी सीजन, अर्थ जगत में राहत, बाजार झूमा, यूपीआई पर शुल्क, दीपावली तक टला। शेयर बाजार की रफ्तार से 1100 अंक से अधिक चढ़ा सेंसेक्स। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, 8000 की भीड़ जुटा देश की आवाज नहीं बन सकते राहुल, 2029 में भी हार के लिए तैयार रहे कांग्रेस। एसआईआर के विरोध के नाम पर घुसपैठियों को बचाने की विपक्ष की रणनीति समझ चुकी है जनता। गृहमंत्री अमित शाह का बिम्स्टेक देशों से आह्वान पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, आतंकियों को पनाह ना मिले। पत्र ने दिया है, चीन को भारत की दो टूक, लद्दाख हमारा अटूट अंग, विदेश मंत्रालय ने कहा, पेचिंग का दावा करने से हकीकत नहीं बदलने वाली। राजस्थान पत्रिका ने पेपर लीक मुद्दे पर नंदन नीलेकणी का सुझाव देते हुए लिखा है, एआई से तैयार करें पेपर, प्रश्न बैंक से बनाएं प्रश्न पत्र, परीक्षा से ठीक पहले तय किए जाएं सवाल, 1.5 लाख परीक्षा केंद्रों का नेटवर्क बढ़ेगा। दैनिक भास्कर ने दावा शीर्षक से दिया है, प्रदर्शन कहां और कैसे हो, कोर्ट ने केंद्र से मांगा पक्ष, प्रदर्शनों से व्यापारियों को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट जेई की तैयारी के लिए जल्द आएगा अभ्यास एआई ऐप, घर में प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड कर एग्जाम दे सकेंगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से 73 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मस्त मुंबई में मैं आपका मनमीत आरजे अमित तहे दिल से स्वागत करता हूं। वैसे आज गुरुवार है 14 अक्टूबर और मस्त मुंबई में हम मुंबई के मतवाले राही इस सेगमेंट में आप सभी को एंटरटेन कराने वाले हैं। पता है ये शहर कभी सोता नहीं है और यहाँ के लोग कभी भी रुकते नहीं हैं। तो मुंबई के मतवाले राहियों, जहां रफ्तार ही जिंदगी है और मस्ती ही बंदगी है, ऐसे मस्त मुंबई के सेगमेंट मुंबई के मतवाले राही में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपको बतलाता हूं कि कई सारे सपनों के साथ, कई अरमानों के साथ हमारी जिंदगी बीतती जाएगी, मगर हमारा ये शो यादगार बनाएंगे कुछ सदाबहार गीतों के साथ। किशोर कुमार की आवाज से करते हैं आगाज इस शो का। Keep listening 107.1 FM Rainbow, musically yours.

0: आपकी पसंद की कोई भी कार लीजिए, कॉस्मोस कार लोन तो है ही। कार लोन 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% से, टेन्योर 7 साल तक, नियम व शर्तें लागू, 0 प्रोसेसिंग फी। सफर सुहाने साथ कॉस्मोस कार लोन के। आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।
1: लड़का लड़की है बराबर, तो पूछना क्यों?
2: PCP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

8:46 हो चुके हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल और आप मस्त मुंबई इस प्रोग्राम में मेरे यानी आरजे अमित के संग जुड़े हुए हैं। वैसे हर दिन बड़ा खास होता है मगर आज रेडियो से गूंज रही हैं मुंबई की धड़कन। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कुछ जबरदस्त बातें, जबरदस्त गाने। मुंबई में सुबह की चाय और लोकल ट्रेन की भागदौड़ के बिना दिन शुरू नहीं होता। आज हम इसी लोकल से जुड़े कुछ किस्से आप सभी के संग बांटेंगे, हाँ जो सिर्फ इसी शहर में हो सकते हैं। तो सीट की चिंता छोड़ दीजिए, सीधे दिल के पायदान पर खड़े हो जाइए क्योंकि अगली पायदान पर एक और गाना आने जा रहा है।

हाँ है, जो हर किसी को याद दिलाएगा कि यार मुंबई में, महाराष्ट्र में और हमारे पूरे देश में अब नवरात्रि का उल्लास देखने मिल रहा है। क्या जबरदस्त उमंग है, क्या जबरदस्त वाइब है, और यही अंदाज आज हम भी संतोषी माता को पूजन करके नवरात्रि में दुर्गा माँ के नौ स्वरूपों में से आज चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा देवी का उन्हें पूजन करते हैं। और ये गाना सुनते हैं, उषा मंगेशकर ने गाया।

भैया ये गरबा के बीच जो है ना, वो हम सभी को देवी माँ की ओर आकर्षित कर जाती है। नवरात्रि के नौ स्वरूपों को पूजन करने वाले कई सारे लोग इस नवरात्रि में व्रत रखते हैं। कुछ लोग तो इतना जबरदस्त कि सिर्फ फलाहार लेकर, कुछ पानी पीकर और कुछ बिना चप्पल पहने। तो ऐसे जितने सारे हमारे भक्त हैं, सभी को आर्य अमित का सलाम तो है ही, मगर आप सभी को मेरी ओर से नवरात्रि उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो, दुनिया में कई सारे त्यौहार होते होंगे, मगर हिंदुस्तान की धरती पर जो त्यौहार होते हैं ना, वो त्यौहार न सिर्फ ऐसे दिवाली, नवरात्रि या अन्य कई सारे त्यौहार आने के बाद, मुझे ऐसे लगता है जैसे ही सुबह होती हैं, मानो हमारे जीवन में त्योहारों का आना शुरू हो जाता है। जब हम किसी के चेहरे पर प्यारे से मुस्कान लाते हैं ना, तो वो भी तो हमारे लिए एक त्यौहार के बराबर ही तो है। इसलिए तो आज मानो हम त्यौहार मनाते वक्त दीपाली शिरोडकर, प्रमोद चिंचोलकर, विनोद विजेंद्र घटोल, राजन झारखंड से, वैदेही प्रदीप अनंत कृष्णन, गणेश पाटिल, फिरोज सिगानपुरिया, राकेश माथुर, दत्तात्रेय आदत, यश शिंदे और आशुतोष देशपांडे छत्रपति संभाजीनगर से, चेतन कुमार गया बिहार से, पंकज मोहोड हमें सुन रहे हैं, हितेंद्र दास आसाम से सुन रहे हैं, प्रमोद कारखाने, शिल्पा तोडनकर अंधेरी से सुन रही हैं, रामदास तांबे जी हैं, सुरेश बावकर, दिनेश महाजन, प्रकाश शिंदे जी, दीपा पालकर जी और कई सारे श्रोता जो कि हमें सुन रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ आप व्हाट्सएप करना ताकि हमें पता चले कि आप भी हमारे संग जुड़े हुए हैं। 8657661071। चलो, आपके चेहरे पर ये प्यारे से मुस्कुराहट ला के हम भी अपना ये त्योहार मनाते हैं। जैसे ही पंछी उड़ने के बाद, हमें उनका उड़ना एक बात सिखाता है कि रुकना नहीं है, मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहना है। जैसे लोकल ट्रेन का सफर होता है, हमें हमारी मंजिल की ओर ले जाता है, ठीक वैसे चलो हम भी चेहरे पर प्यारी से मुस्कान रखे इन पंछियों के साथ उड़ते हैं।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम
2: टेन्योर इंटरेस्ट रेट और ब्याज के ऑप्शंस चुनिए अपनी जरूरत के हिसाब से
1: मंथली ब्याज के लिए 445 दिन क्वार्टरली के लिए 446 दिन और कम्युलेटिव ब्याज के लिए 447 दिन
2: डिपॉजिट टेन्योर के हिसाब से ब्याज दर 7.5% से लेकर 7.30% तक
1: स्कीम सिर्फ सीमित समय के लिए
2: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम ज्यादा जानकारी के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक जीवन करें समृद्ध
3: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है
4: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है
5: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है
6: व्हीकल कोई भी हो पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20 भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों 9:02 हो चुके हैं और आज हमारे संग जुड़ने वालों की तादाद बढ़ने लगी है। इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मनोज मात्र दहसर मुंबई से, संतोषी माँ का गीत सुनकर दिल खुश हो गया, ये फिरोज जी का कहना है। श्रीधर मोरसकर जी भी हमारे संग जुड़े हैं और नवरात्रि आदि शक्ति का चौथा

रूप जो कुष्माण्डा देवी का है, उस देवी को मालपुआ और भोपला से बनाया पेठा भोग में देते हैं, ऐसा दीपा जी का कहना है। देखिए यही तो है हमारी मुंबई। इस मुंबई में अगर आप लोकल ट्रेन में चढ़ोगे और मुश्किल से अगर जगह मिल जाए ना, तो बस अपना एक ग्रुप बन जाता है और उस ग्रुप के साथ मानो रिश्ता कोई हो न हो, पहचान वाले हो न हो, मगर अपने आप हर दिन मुलाकात होने की वजह से वही वो 7-14 वाली लोकल पकड़कर ट्रैवल करने वाले लोग मतलब हर दिन उसी चेहरे का इंतजार करते, अरे यार ये भाई आज आए नहीं या फिर ये बहन आज आई नहीं, है ना। तो ये अपने आप रिश्ते पनपने लगते हैं और ऐसे रिश्ते पनपने के बाद कोई किसी को जानता हो या ना हो मगर एक दूजे की चिंता करने लगता है, केयर करने लगता है। जैसे नवरात्रि शुरू होती है हर घर में प्रसाद बनता है और माता को चढ़ाया हुआ वही प्रसाद, जैसे कि मालपुआ का बात मालपुआ का जिक्र किया ना हमारी दीपा पारकर जी ने, मतलब वो दूसरे दिन ट्रेन में अपने ऐसे ही हम सफर बने सभी साथियों के संग बांटा जाता है। चलिए ऐसे ही अनजान चेहरे जो एक दूजे को न जानते हुए भी जानने वालों से भी बेहतर रिश्ता बांधते हैं, बनाते हैं और उसे संभालते हैं, उनके लिए ये गाना।

0: हर किसी को चाहिए अपने सपनों का घर और हर किसी को चाहिए किफायती ब्याज दर। कॉस्मोस होम लोन, ब्याज दर 7.80% से शुरू, 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध, 10 और 25 साल तक और 0 प्रोसेसिंग फी। नियम व शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
2: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।

देखिए मस्त मूवी में देखते देखते 9:17 हो चुके हैं, अभी भी 1.25 घंटा बचा है, मगर 10 बजे के उस पार पता है नमस्ते भारत में हम बात करने वाले हैं कोरियोग्राफर, जो कि बॉलीवुड के जाने माने कोरियोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे गोपी जी से। तो आप जरूर उनसे बातें करते वक्त हमारे संग जुड़ा रहना, ताकि आपके सवालात भी हम उनसे पूछ सके। आज का सब्जेक्ट क्या होगा? आज का सब्जेक्ट होगा लेट्स डांस ऑन

शकील बदायूनी के लिखे बोल, नौशाद का संगीत और मोहम्मद रफी की आवाज बैजू बावरा फिल्म के इस गाने के साथ हमें कितना प्यारा मैसेज दे जाती हैं कि पहले इंसान बनो। बस यही तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का कहना था। आज संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर के कार्य को याद करते हुए महेंद्र कपूर ने गाया एक आदमी और इंसान का गाना आप सभी के लिए। Keep listening 107.1 FM Rainbow with आपका मनमीत आरजे अमित।

दीपा पालकर जी हो, प्रमोद चंचोलकर जी हो, यश शिंदे, स्नेहा वर्ली से राकेश माथुर, श्रेय राउत, विजेंद्र घटोल अकोला से प्रदीप अनंत कृष्णन, दीपाली शिरोडकर, शुभलक्ष्मी मस्तकार, महेश भाटकर, श्रीधर मोरसकर, मनोज मात्रे दहीसर मुंबई से, फिरोज सिगानपुरिया और राजन झारखंड से, वैदेही गणेश पाटिल वाधवन से और दत्तात्रेय दत्तविलापुर से और आशुतोष देशपांडे छत्रपति संभाजीनगर से, चेतन कुमार जी गया बिहार से, पंकज मोहोड़ जी हमारे संग जुड़े हैं अमरावती से और आज जागतिक मानक दिवस भी है उसके बारे में भी उन्होंने हमें जानकारी साझा की है। हितेंद्र दास जी हैं, प्रमोद कारखानीस जी हैं और शिल्पा तोडनकर, रामदास तांबे, सुरेश बावकर, दिनेश महाजन, शिराल, हरिचंद्र माछरेकर और धनोरकर हमारे संग जुड़े हैं और आर्यन सोमुंची है जलगांव से। तो इन सभी का मैं तहदिल से स्वागत करता ही हूँ। बट बताना चाहूँगा, देखिए आज जो सब्जेक्ट हमने छेड़ा है ना, उस सब्जेक्ट के साथ मुंबई के मतवाले राहियों को अगर कोई गाना याद आता होगा तो इसी सब्जेक्ट से मिलता जुलता एक अंदाज फिल्म इज्जत से साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा हुआ हमारे जगन्नाथ केदारे खंडाला से हमें ब्लाइंड होम से फोन करते हैं और बतलाते हैं ये गाना हम सुनना पसंद करेंगे। साहिर साहब के लिखे बोलो।

मुझे एक बात सुन के बड़ी अच्छी बात लगी यार। मॉर्निंग में अगर ऐसी बात सुनने मिले ना, तो देखो लोकल ट्रेन में सफर करने वाले भी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अरे आपको बताया क्या यार, ट्रेन में यहाँ पे खड़े रहने के लिए कभी कभी जगह नहीं होती, मगर हाईवे पे यानी समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पे या फ्रीवे पे या फिर अगर आप पूना जा रहे हो तो पूना एक्सप्रेस हाईवे पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, और पहला घंटा जो होता है ना, वो पहला घंटा बहुत अहम होता है किसी भी ऐसे इंसान के लिए जिसका अभी भी एक्सीडेंट हुआ हो और उसे अस्पताल की ज़रूरत हो। तो ऐसे सुनने में आया है कि 2027 से हाईवे पर गोल्डन आर्स में एयर एम्बुलेंस मिलने वाली है। लगभग सभी एक्सप्रेसवे पर खास सिस्टम लगाने की योजना शुरू कर दी गई है और 15 नवंबर तक एयर एम्बुलेंस की जो है ना एसओपी तैयार हो रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 2017 में ये एम्बुलेंस की एयर एम्बुलेंस की जो सुविधा है वो शुरू होगी, तो कई सारे लोगों को उसका लाभ भी मिलेगा। मगर हमने देखा है लोकल ट्रेनों में अगर किसी को कुछ लग जाए या फिर कोई बीमार हो जाए या फिर कोई ऐसे उपचारों के लिए ज़रूरतमंद नज़र आए ना, तो एयर एम्बुलेंस छोड़ो, ट्रेन में सफ़र करने वाले कई सारे लोग उनके साथी बन जाते हैं और उनके उनको दवाखाने में पहुंचाने के लिए इस कदर जुट जाते हैं कि मानो यार जैसे कोई वो अपना रिश्तेदार हो। बस यही तो बात है, हर किसी को अगर ये बात समझ में आ गई तो कितना मज़ा आएगा, है ना? क्योंकि हर किसी को अपना मानना, यही तो ज़िंदगी है, नहीं तो बाकी ज़िंदगी पहेली है। ये पहेली हम ज़रूर सुलझाएंगे। बने रहना FM रेनबो पर आपका मनमीत RJ अमित के संग मस्त मुंबई शो में।

0: आज शाम को हमारे इंडियन प्लेयर भी हमें हंसाएंगे, यही हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि शानदार फॉर्म में भारतीय बल्लेबाज वेस्ट इंडीज के खिलाफ आज T20 इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए तैयार है। और इसी जीत की लय को अगर वे बरकरार रखते हैं तो शानदार एक और जीत होगी। वैसे भारत इस समय 2-1 से आगे हैं और सीरीज अपने नाम करने के लिए एक और जीत की ज़रूरत है। वहीं पिछले मैच में जो करारी हार थी उसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ वापसी करने के लिए तैयार तो ज़रूर होगी, मगर हम चाहते हैं कि देखें आज भी कई सारे रिकॉर्ड्स बने, हमारे जो नए यंगस्टर्स खिलाड़ी हैं वो भी यूं ही खेलते रहे और दिखाए भाई भारत की क्रिकेट टीम का भविष्य जो है ना वो उज्जवल हाथों में है। तो चलिए, एक तरफ 5वीं बार शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द मंथ के तौर पर आईसीसी की ओर से चुने गए हैं और शेफाली वर्मा को एशिया कप और एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन के लिए महिला वर्ग में यही सम्मान मिला है, तो उनका भी हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं और बढ़ते हैं आगे एक कमर्शियल ब्रेक के साथ।
1: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आपकी पसंद की कोई भी कार लीजिए, कॉस्मोस कार लोन तो है ही। कार लोन 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% से, टेन्योर 7 साल तक, नियम व शर्तें लागू, 0 प्रोसेसिंग फी। सफर सुहाने साथ कॉस्मोस कार लोन के। आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार, 46 मिनट हो चुके दोस्तों और मैं हूं आपका मनमीत हर्षमीत। आज मैं आप सभी से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, नवरात्रि का माहौल है तो 10 बजे आप समाचार सुनेंगे। समाचार के इस पार हम बॉलीवुड कोरियोग्राफर गोपी इनसे बात करने वाले हैं। लेट्स डांस विद डांडिया बिट्स इस अनोखे प्रोग्राम में, गपशप विद आरजमित इस सेगमेंट में। नमस्ते भारत, आज कुछ शानदार होगा, आप हमारे साथ जुड़े रहना क्योंकि जबरदस्त धूम भी होंगी, बातें भी होंगी और गरबा के बारे में कुछ जान भी लेंगे। यार कैसे डांस करते हैं, है ना। बस आज ये सफ़र तय करते वक्त मुझे ऐसे लगता है ना कि मुंबई में लोग बहुत व्यस्त है, किसी के पास वक्त नहीं है यार। लेकिन कभी शाम को चर्च गेट या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से छूटने वाली फास्ट लोकल या लेडीज़ या जेंट्स कंपार्टमेंट में आपने कभी कदम रख कर देखा है? अरे कभी कभी तो है ना पूरा डिब्बा एक सुर में अंताक्षर भी खेलता है। अजनबी लोग होते हैं यार, एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते मगर मिलकर कभी कभी फिल्मी गीत छेड़ देते हैं। हाँ, हालांकि आजकल OTT का ज़माना आया है तो कहीं से लोग अपने अपने मोबाइल में जुड़ा रहते हैं हेडफोन्स लगा के, ब्लूटूथ लगा के, वो बात अलग है। मगर क्यों धक्का मार रहा है यार भाई? अरे मैं धक्का नहीं मार रहा यार, पीछे वाले से धक्का आ रहा है। ये बातें अक्सर आपको आपके कानों पर सुनाई देगी ही देगी। ट्रेन में चढ़ने के लिए मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ती है मगर भीड़ का सैलाब ऐसा होता है ना कि खुद ब खुद आपको ट्रेन के सीट तक पहुँचा ही देता है। अब हम चाहते हैं अगर आप भी हमारे इस शो में सीट पर इत्मीनान से बैठे हो तो यूं ही बने रहो क्योंकि हमारा सफर अभी जारी है, वो खत्म नहीं हुआ है ना। क्योंकि अब तक हमारे वो मेहमान आए नहीं है जिनसे मिलने वाला है, वो आएंगे ठीक 10 बजे। बने रहना FM रेनबो पर RJ अमित के संग।

दोस्तों, आज इसी गाने के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आखिरी मोड़ पर आपको एक गाना सुनाते हैं। ठीक 10 बजे आप सुनिए हिंदी समाचार। हिंदी समाचार के उस पार हम नमस्ते भारत में मुलाकात करेंगे बॉलीवुड कोरियोग्राफर गोपी जी से। बने रहना FM रेनबो पर आपका मनमीत आरजे अमित के साथ।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर अब तक के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से 72 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध। समाचार में आगे, नई दिल्ली में बिस्मटेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिस्मटेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। समाचारों में आगे, पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल मुंबई में समुद्री राज्यों के विकास परिषद MSDC की 21वीं बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री सोनोवाल ने देश के जहाज निर्माण उद्योग को सहायता देने के लिए ऋण जोखिम बीमा की दो विशेष योजनाओं की घोषणा की। और समाचारों के अंत में खबर है खेल जगत से जुड़ी। भारत

और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत इस श्रृंखला में 2-1 से आगे हैं। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम नमस्ते भारत।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: दोस्तों, वैसे हर दिन हमारे जीवन में बहुत खास होता है, मगर 14 अक्टूबर को आया हुआ ये पल हम गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि नमस्ते भारत में मैं आपका मनमीत आरजे अमित आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज वैसे तो हम सभी कई सारे श्रोताओं के संग जुड़े हुए हैं, अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो हमें 8657661071 इस व्हाट्सएप नंबर पर इत्तला कर दीजिए कि भैया हमारा नाम ये है, हम यहाँ रहते हैं और आपको FM सेट के जरिए या न्यूज़ ऑन AIR ऐप के जरिए सुन रहे हैं। जुड़ना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आरजे अमित कहता है कि बिखरने के लाखों बहाने मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढें। तो चलिए आज हम जुड़ेंगे बस कुछ ही पलों में एक ऐसी हस्ती से जो कि बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर है। कई सारी फिल्मों के लिए, सीरियल्स के लिए उन्होंने कोरियोग्राफी की है, कई सारे अवार्ड जीते हैं, रियलिटी शोज के जरिए भी इनका चेहरा, इनका डांस और इनकी कोरियोग्राफी हर किसी को भा गई है। हम चाहते हैं बॉलीवुड कोरियोग्राफर गोपी जी से बस हम कुछ ही पलों में जुड़े। आप सभी बने रहना आपका मनमीत आरजे अमित के संग FM रेनबो पर। लेट्स डांस विद डांडिया बीट्स में इस गाने के रिदम से आपको कुछ याद आ रहा है? पुराने जमाने में सोसाइटी के टेप रिकॉर्डर पर ऐसे गाने लगते थे और फिर हम गरबा झूमने के लिए तैयार हो जाते थे। चलो आज देखते हैं कौन कौन सी स्टेप्स किस तरह की जाती हैं, गरबा का इतिहास क्या है, सब कुछ जान लेंगे कोरियोग्राफर गोपी जी से।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मनमीत आर्य अमित और आज हम जुड़ने जा रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने कोरियोग्राफर गोपी जी से। गोपी जी नमस्कार।
1: नमस्कार, जय माता दी।
0: जय माता दी, बोलो अम्बे माते की
1: जय।
0: आपका तहे दिल से स्वागत है गोपी जी। एक तरफ आपने पिछले कई सालों से कोरियोग्राफी की है, एक डांसर के तौर पर आप मशहूर हैं, है ना, कई सारे अलग अलग ग्रुप्स के संग आप जुड़े हुए हैं और रियलिटी शो में भी आपने कोरियोग्राफ किया है और डांस भी किया है। तो हमें अच्छा लगता है कि जब रिपब्लिक डे पर दिल्ली में आप कोरियोग्राफ करते हैं और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओर से आपको सम्मानित किया जाता है और महाराष्ट्र दिन के लिए भी आपका चयन होता है एज अ कोरियोग्राफर, इलाहाबाद के लिए भी स्टेट पुलिस के लिए आप परफॉर्म करते हैं और कुलाबा में भी आपने आर्थ आर डे में सोशल कॉज के लिए अपना योगदान दिया है। तो ऐसी हस्ती आज हमारे संग जुड़ी हैं। मैं हमारे सारे श्रोताओं से विनती कर रहा हूं कि अगर आप भी अपने सवाल कुछ उनसे पूछने चाहे तो जरूर पूछिए, क्योंकि हमारे संग जुड़ चुके हैं बॉलीवुड के जाने माने कोरियोग्राफर गोपी जी। गोपी जी आपका तहे दिल से स्वागत है।
1: नमस्कार, थैंक यू सो मच आपने अमित जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
0: जी जी जी जी, मुझे आपसे पूछना है, देखो गरबा का माहौल चल रहा है हर जगह, बराबर, और हर जगह कुछ ऐसी धूम है कि यार मुझे लगता है मैं डांस करने जाऊँ, बट हर किसी के बस की बात नहीं है ना डांस। तो सबसे पहले हमें बताइए कि आखिर ये गरबा है क्या आपके नजरिए से?
1: मेरी नजर से गरबा जो है एक हैप्पीनेस है, एनर्जी है जो टुगेदर एक साथ मिलकर की जाती है, सिम्बॉलिक है। और गरबा जो है, ये शब्द जो है गरबा, ये शब्द संस्कृत का है जो गर्भ से आया हुआ है।
0: अच्छा,
1: इसे गर्भ कहते हैं। परंपरा जो होती है हमारी गरबा की, जो हम गर्भी होती है गरबा में, वो गर्भी सेंटर में रखी जाती है और उसमें जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में अनाज उगाया जाता है और अनाज हमारा जो होता है वो प्रकृति कहते हैं, प्रकृति माता रानी को हम प्रकृति कहते हैं,
0: बराबर।
1: तो उस प्रकृति से ही हम जुड़े हुए हैं, वो शक्ति है। और मेरा तो कहना है कि जो गैलेक्सी अपनी है ना वो भी गरबाई करती है, बिकॉज सूर्य के इर्द गिर्द ही हम पूरे घूमते रहते हैं, हमारे ग्रह तारे हैं,
0: बराबर।
1: तो एक सिंबॉलिक वो भी हम उसे कह सकते हैं।
0: वाह क्या बात है, चलो इसी बहाने एक गाना हम सुनाते हैं और गानों के साथ साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे ऐसे लगता है कि इस मोड़ पर हम डांडिया बीट्स, जिस गाने को सुनने के बाद करने की इच्छा मन में पैदा हो जाती है ना, वो गाना आप सभी के लिए। कीप लिसनिंग 107.1 FM रेनबो विद आपका मनमीत आरजे अमित।

0: SPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम,
2: टेन्योर, इंटरेस्ट रेट और ब्याज के ऑप्शंस चुनिए अपनी जरूरत के हिसाब से।
1: मंथली ब्याज के लिए 445 दिन, क्वार्टरली के लिए 446 दिन और कम्युलेटिव ब्याज के लिए 447 दिन।
2: डिपॉजिट टेन्योर के हिसाब से ब्याज दर 7.5% से लेकर 7.30% तक।
1: स्कीम सिर्फ सीमित समय के लिए।
2: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम, ज्यादा जानकारी के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।

0: आज हम बात कर रहे हैं हमारे मेहमान बॉलीवुड कोरियोग्राफर गोपी जी से। गोपी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बचपन से ही थोड़ा सा रिदम के साथ डांस करना जानते हैं, मतलब कोई पार्टी हो, कहीं भी कुछ बैंड बजे, है ना, शादियों में, बारातों में। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉन डांसर्स है यार, बट उनकी चाहत तो है गरबा खेलने की, तो उनके लिए आप कैसे और क्या गाइड करोगे?
1: गाइड मतलब गरबा एक चीज ऐसी है और उसका रिदम ऐसा है कि उसके चार बीट ना कैसे चेंज होते हैं वो हमको समझ में आते हैं। वेरी बेसिक उसके रिदम होता है। आपको कुछ नहीं करना है, टिप्स लेना आपको, पहले तो गरबा का जो स्टार्ट है वो ताली से होता है, ताली से। तो चार बीट पकड़ते हुए 1 2 3 4 आप ताली से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद डांडिया में अगर आपको डांडिया करना है तो बेसिक स्टेप्स है डांडिया के, वो आप यूज कर सकते हो। तो ताली से आप शुरू करेंगे, आपका इजी से आपका हो जाएगा। और गरबा का रिदम एक वेरी सिंपल रिदम होता है।
0: आपको क्या लगता है नवरात्रि में ये गरबा या फिर डांडिया, इसका क्या इम्पोर्टेंस है?
1: डांडिया का इम्पोर्टेंस बहुत है कि जो गरबा जो नवरात्रि में आती है
0: जी,
1: ये एक युद्ध के तौर पर समझा जाता है। माता रानी ने युद्ध किया था महिषासुर के साथ, तो तलवार जो होती है उसका सिंबॉलिक जो है वो डांडिया है
0: जी।
1: और युद्ध जब होता है तो एक से युद्ध नहीं होता, बहुत लोगों से युद्ध होता है। तो आपने देखा होगा कि डांडिया जब है तो दो सर्कल होता है, एक अंदर का सर्कल और बाहर का सर्कल। तो हर कोई जो जब डांडिया खेलता है तो उसका पार्टनर चेंज हो जाता है,
0: बराबर
1: युद्ध का प्रतीक है, इसलिए डांडिया खेला जाता है।
0: बराबर, ओके। तो आजकल वैसे तो डांडिया मतलब हाथ में स्टिक्स लेके खेलने की जो प्रथा है वो तो ज्यादा देखने नहीं मिलती, वो पारंपरिक प्रथा है, वो ज्यादातर किन इलाकों में हम देख सकते हैं?
1: ये गुजरात, कच्छ, इस इलाके में आपको देखने को मिलेगा।
0: हाँ,
1: बड़ौदा, अहमदाबाद,
0: ओके ओके,
1: बॉम्बे में ज्यादातर डांडिया खेला नहीं जाता, गरबा ही खेला जाता है।
0: बराबर बराबर, छोटे छोटे ग्रुप के साथ गरबा खेलने के लिए कई सारे लोग आगे आते हैं। हम उनके अटायर के बारे में और साथ ही उनके ड्रेस, उनके तैयारियों के बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं चाहूंगा, एक गाना है मिस्टर नटवरलाल का जो मैं बचपन से सुनते चले आ रहा हूँ, मगर लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया। ये गाना सुनते ही मुझे ना पैर थिरकने का मन करता है, नाचने का मन करता है, और गरबा में ये गाना अक्सर हमने सुना है बचपन से। तो हम चाहते हैं जिन जिन गीतों में हिंदी फिल्मों का सहारा लिया गया और गरबा में उसे इस्तेमाल किया गया, वो गाना भी हमारे सारे श्रोताओं को हम सुनाएं।
1: और एक मैं थोड़ी एक बात बताना चाहता हूँ
0: सर, हम बात करेंगे इस गाने के बाद। जी शुक्रिया।

0: हमारा दिल लेने वाले कई सारे श्रोता हमारे संग जुड़े हुए हैं। गोपी जी, आपसे सवाल पूछते वक्त हमारे कई सारे श्रोताओं की ओर से अलग अलग सवाल आ रहे हैं, और हमारी दीपा पालकर जी एक श्रोता है, वो पूछ रही हैं कि इसके लिए कोई कोर्स करना पड़ता है या फिर गाने के लिरिक्स को ध्यान से सुनकर कोरियोग्राफी हम खुद कर सकते हैं, मतलब कोरियोग्राफी करने के लिए।
1: आपको बेसिक अगर गरबा करना है तो आप देख देख कर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोर्स की बात करें तो आजकल बहुत सारे अपडेटेड वर्जन है गरबा के खेलने के
0: जी,
1: वो आपको जब तक कोर्स से आप नहीं सीखेंगे आपको वो नहीं आएगा।
0: ओके और कुछ देर पहले तो आप
1: कर सकते हैं
0: जी, और कुछ देर पहले आप कुछ एक पॉइंट कह रहे थे जी।
1: मैं बताना चाहता था कि हमारे गरबा को एक अचीवमेंट है जो कि 6 दिसंबर 2023 में मिली थी यूनेस्को से।
0: अच्छा,
1: अमूल्य सांस्कृतिक विरासत है।
0: हाँ।
1: इसकी मान्यता हमें 2023 में मिली है।
0: अरे वाह,
1: यानी गरबा जो हम करते हैं वो सिर्फ एक डांस नहीं करते बल्कि पूरी संस्कृति और परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं।
0: क्या बात है, वाह। चलो इसी बहाने एक गाना भी हम सुना देते हैं, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक संस्कृति को या विरासत को आगे ले जाने का काम हम त्योहार के रूप में मनाते मनाते कर जाते पता नहीं, बट यूनेस्को की ओर से इसकी वजह से हमें सम्मान मिला है, ये बात हमें पता नहीं थी। आपने ये बात साझा करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं और कई सवालों के साथ हम आपसे जुड़े रहें, बस हमारे साथ बने रहना, क्योंकि आर्ज अमित कहता है कि बिखरने के लाखों बहाने मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढें।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: हर किसी को चाहिए अपने सपनों का घर और हर किसी को चाहिए किफायती ब्याज दर। कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू, 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध, 10 और 25 साल तक और 0 प्रोसेसिंग फी। नियम व शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।
2: दोस्तों आज 10:31 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर नमस्ते भारत ये प्रोग्राम। और बॉलीवुड कोरियोग्राफर गोपी जी के साथ बातें करते वक्त हमें गोपी जी कई सारे श्रोताओं के मैसेज आते हैं। मनीष वकील ना कहते हैं कि आज 9:15 मैं बड़ा ही परेशान था, परेशानी की वजह से मैं एफएम बिजी शेड्यूल की वजह से सुन नहीं पाया, बट मिलन फिल्म का एक गाना सुना और मैं जुड़ गया। मैंने कहा ना, बिखरने के लाखों बहाने मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढे। तो वे जुड़ तो चुके हैं और ऐसे कई सारे श्रोता है जो कि हमें सुनना पसंद कर रहे हैं। उसमें यवतमाल महाराष्ट्र से उषा बुरांडी जी हैं, साथ ही दिलीप कुमार तनवर जी हैं, मोहम्मद फरमान जी हैं जो कि हमें उत्तर प्रदेश से सुन रहे हैं, और दिल्ली से हमारे संग सुखविंदर सिंह जोड़ा और उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। दीपा पलकर जी हैं, श्रेय राउत जी हैं, शुभदा जी हैं, वो कह रही है कि अगर मुझे सीखना है तो क्या गोपी जी मुझे सिखाएंगे।
3: आजकल ऑनलाइन सारी चीजें ओपन है।
2: देखिए देखिए, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा भाई, ये गरबा जो है, वैसे हमारे लिए गरबा तो गरबा ही है ना, ताली मारो बस, बट क्या ये गरबा के भी कुछ टाइप्स है जैसे कि इंडियन क्लासिकल डांस के होते हैं?
3: हाँ जी, इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं
2: जी,
3: मैं आपको एक एक करके शॉर्ट में बता देता हूँ
2: जी।
3: जैसे

0: ताली का भी गरबा होता है, एक ताली से शुरुआत होती है गरबा से।
1: अच्छा,
0: इसमें सिंगल ताली से हम गाप गरबा खेल सकते हैं। दूसरा होता है बे ताली, मतलब दो ताली से खेलते हैं, सेम पैटर्न होता है लेकिन दो ताली से खेलते हैं। तीसरा भी होता है वो तीन ताली, त्रण ताली उसको बोलते हैं, सेम पैटर्न में चलता है। तीसरा होता है, चौथा होता है दूरिया गरबा करके, इसमें एनर्जी लगती है, फुटवर्क होते हैं इसमें और बहुत सारी एनर्जी के साथ खेलना पड़ता है। चौथा होता है डांडिया राज जो हमको पता है। पांचवा होता है गरबी, गरबी मतलब सर के ऊपर ये गरबी रखते हैं, एक दो तीन चार पांच, जैसे आपने नौ गाना है आता है चंद्रमा।
1: गरबी मतलब क्या सर?
0: गरबी मतलब जो देवी माँ की जो हम लोग पूजा करते हैं घट स्थापना,
1: जी हाँ,
0: उसको गरबी कहते हैं। वो गरबी लेकर भी डांस होता है।
1: ओके ओके,
0: हाँ, उसके ऊपर पैटर्न रखे, ऊपर रखकर आप खेल सकते हो। लास्ट में होता है सनेडो।
1: अच्छा,
0: सनेडो एक गरबा है जो गुजरात में खेला जाता है।
1: जी जी जी।
0: और अभी का जो मॉडर्न गरबा तो आपको सबको पता है, जो बॉलीवुड गाने, बॉलीवुड जो गाने होते हैं उस पर किया जाता है। तो ऐसे सात पैटर्न आपको गरबे के देखने को मिलेंगे।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली खेलते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम क्या खेल रहे हैं।
1: सही है सही है। चलो इसी बहाने हम सबको सुना देते हैं एक और गाना, उड़ी उड़ी जाए, सुखिंदर सिंह, भूमि त्रिवेदी और करण सगातिया की आवाज में गाया हुआ। ऐसे कुछ गानों के साथ हमारा एफएम रेनबो का जो स्टूडियो का माहौल है ना सर, वो एकदम गरबामय हो गया है। इन बिटवीन मैं भी कुछ डांस स्टेप्स कर रहा हूँ। आई नो हर कोई देख नहीं सकता, बट सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आकाशवाणी एफएम रेनबो को जरूर देख सकते हैं कि किस तरह हम यहाँ पे एंजॉय करते हैं। बने रहना एफएम रेनबो पर, आपका मन में

0: डॉक्टर अंजू जी भी हमारे से जुड़ी हुई हैं और इन सभी के साथ अकोला के विजेंद्र घटोल जी। गोपी जी, आप बिलीव नहीं करोगे, विजेंद्र जी खेत में किसान के तौर पर काम कर रहे हैं। माटी के साथ काम करते वक्त माटी हाथ में लिए हुए हम जो बातें कर रहे हैं उसे सुन रहे हैं और खेत में ही डांस करने का प्रयास कर रहे हैं हमारे गानों पर। देखिए, ये जज्बा होता है हर किसी का, लोग कुछ इस कदर एंजॉय करते हैं हर गीत को, हर पल को। और
1: ऐसा होता है, एनर्जी वाला माहौल होता है।
0: हाँ, देखिए ना, मतलब हम शहरों में रहते हैं तो ये बात समझ सकते हैं कि किस तरह शहरों में हम सब ये एंजॉय कर सकते हैं, बट आप मुझे बताइए, हर राज्य में ये गरबा खेलने की जो पद्धत है, जो रूढ़ी है, वो शायद अलग हो सकती है, है ना? तो हर राज्य या हर प्रांत के हिसाब से वहाँ पे कैसे कैसे गरबा खेला जाता है?
1: गरबा खेला जाता है, संस्कृति अलग अलग होती है, पैटर्न हमारा जो एक माँ की पूजा होती है वही होती है, प्राण के हिसाब से माँ के अलग अलग रूप है और उसको उसी रूप में पूजा जाता है
0: जी।
1: लेकिन गरबा जो होता है बेसिकली गुजरात में होता है और दूसरा एक डांस होता है जो हमको सबको पता है कि गरबा गुजरात में होता है, डांडिया गुजरात में होता है
0: जी।
1: लेकिन इसी साल में वेस्ट बंगाल में धुनुची डांस होता है।
0: कौन सा?
1: धुनुची डांस।
0: अच्छा।
1: जिसमें धुनुची रखी जाती है और माँ का पूजा आरती जो होती है वो धुनुची डांस से होती है।
0: ओके।
1: हिमाचल प्रदेश में आप जाएंगे तो नाटी करके एक डांस होता है, वो भी माँ को समर्पित होता है। और एक मैं आपको बात बताता हूँ कि जैसे आज हम लोग नवरात्रि में गरबा खेलते हैं, लेकिन राजस्थान में एक जगह गिंदर पारंपरिक नृत्य है और बीकानेर में ये जो डांडिया है वो होली में खेला जाता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, हम नवरात्रि में खेलते हैं, वहां पर होली में डांडिया खेली जाती है, बीच में लोग और नगाड़ा बजा के नगाड़े के पैटर्न पे ही, रिदम पे ही वो जो डांडिया है वो होता है।
0: अच्छा।
1: खाते दिए है।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: संस्कृति जितने अलग अलग है उतने हमको चीजें देखने को मिलती है। तमिलनाडु में कुम्मी करके एक जगह ये डांस है वो वहाँ खेला जाता है। कर्नाटका में मैसूरी दशहरा सांस्कृतिक परंपराओं में आता है। तो गरबा जो है केवल गुजराती गानों का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आजकल कई भाषाओं में, संस्कृतियों में चीजें हमको देखने को मिलती है।
0: वाह वाह वाह, मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी कि कोरियोग्राफर के तौर पर सिर्फ डांस आना जरूरी नहीं होता, डांस के पीछे की कहानी, उसके पीछे का अभ्यास, ये सब कुछ होना और उसके बारे में जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी होता है, ये आपने हमें बतला दिया। हम चाहते हैं हमारे सारे श्रोताओं से ये कहे कि देखो भैया, गोपी जी ने आज तक जितनी मकबूलियत हासिल करी है वो सिर्फ डांस के बलबूते नहीं, बल्कि उनके पीछे जो स्ट्रगल है, उनके पीछे जो मेहनत है और उसके पीछे जो उनका अभ्यास है, वो सब कुछ मिलकर एक इंसान को इतनी बड़ी हस्ती बनाता है। गोपी जी, आपका हम तहे दिल से अभिनंदन भी करना चाहेंगे, शुक्रिया अदा भी करना चाहेंगे और हम चाहेंगे हमारे श्रोताओं के कुछ सवालात हैं, आखिरी सेशन में हम एक गाने के बाद बढ़ेंगे। तो 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हम आखिरी लिंक में आपके सवाल लेने वाले हैं, तो अगर हमारे कई सारे श्रोता अपने सवाल पूछना चाहे तो ज़रूर बताएं। ये गाना सुनते हैं अब की बार अनिक धर और संगीता पंत की आवाज़ में, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। बने रहना एफएम रेनबो पर आपका मनमीत आरजे अमित के संग। बातें चल रही हैं बॉलीवुड डायरेक्टर कोरियोग्राफर गोपी जी से। लेट्स डांस विथ डांडिया बिट्स, गपशप विथ आरजे अमित में।

0: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम।
1: टेन्योर, इंटरेस्ट रेट और ब्याज के ऑप्शंस चुनिए अपनी जरूरत के हिसाब से।
0: मंथली ब्याज के लिए 445 दिन, क्वार्टरली के लिए 446 दिन और कम्युलेटिव ब्याज के लिए 447 दिन।
1: डिपॉजिट टेन्योर के हिसाब से ब्याज दर 7.5% से लेकर 7.30% तक।
0: स्कीम सिर्फ सीमित समय के लिए।
1: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।
2: जैसे नवरात्रि की धूम शुरू हो जाती है ना, फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये सारे गाने पुराने जमाने की याद दिला देते हैं और बतलाते हैं। भैया, एल्बम के गानों के जरिए भी कई सारे लोग मशहूर हो गए दांडिया में, उन्हीं में से एक है फाल्गुनी पाठक। आइए उन्हीं की आवाज सुनते हैं।

0: दोस्तों याद पिया क्या आने लगी है आज भीगी भीगी रातों में। ये गाना सुनते वक्त मुझे 90s की यादें तरोताजा हो गई। आपके मन में क्या ख्याल आया पता नहीं, बट मैं आपसे पूछना चाहूंगा गोपी जी, एक तरफ 90s में जो मजा आता था पता है, गरबा खेलते वक्त हम बड़े इंजॉय किया करते थे, मगर आज ये माहौल थोड़ा बदल गया है 90s के गरबा में और आज के, मतलब उस वक्त कैसेट्स पे देखो उस कल्चर को संभालते थे हम, है ना। जैसे जैसे कैसेट में अलग अलग गाने प्ले होते थे क्या मजा आता था। आपको क्या लगता है उस जमाने के और आज के कल्चर में क्या डिफरेंस है?
1: फर्क इतना है कि 90s के जमाने में एक कैसेट आती थी 38 नॉनस्टॉप, इस टाइप के कैसेट आते हैं और कैसेट एक बार लगती थी एक घंटे तक वो चली रहते थे, उसमें आप कट या कुछ मिक्सिंग नहीं कर पाते थे। तो हम लोग खेलते ही जाते थे, खेलते तारा बिना शाम, सनेडो, ऐसे सारे गाने उसमें आ जाते थे
0: जी,
1: प्ले मिक्स नहीं थी। और अभी के जनरेशन में हम लोग डीजे मिक्स करके अलग अलग तरीके से खेलते हैं, लेकिन अभी नई चीज आ गई कि हम लोग मोबाइल पे आ गए। लेकिन गरबा एक ऐसी चीज है जहाँ आपको ऑफलाइन ही आना पड़ेगा,
0: बराबर बराबर।
1: मोबाइल छूट जाता है और आप एनर्जी को कलेक्ट करते हो, गरबा की
0: बराबर बराबर सही बात है। बट क्या आजकल ये मोबाइल के पीछे हम इतने दीवाने हो चुके हैं, रिश्ते हमने खो दिए हैं, आपको लगता है कि पूरे परिवार के संग एक साथ पहले की तरह आज भी लोग जाते हैं?
1: जाते हैं, आपने तो देखा होगा कि गरबा एक ऐसी चीज है, कोरोना के वक्त भी गरबा लोगों ने घर में गैदर होके खेला हुआ है।
0: कुछ वीडियो देखे थे हमने सोशल मीडिया पे, रील वायरल हुई थी। हाँ,
1: फैमिली मिलके खेला हुआ है, मतलब गरबा का आप उसको रोक नहीं सकते।
0: हमने तो एयरपोर्ट पे भी देखा है एक साथ गरबा खेलते हुए जब फ्लाइट डिले हो गई थी।
1: हाँ जी, हाँ, तो इसका महत्व है गरबा का।
0: मुझे
1: बात करना चाहता हूँ कि हम लोग जो ऐगिरी नंदिनी जो स्तुति करते हैं देवी की, हर पंडाल में हर जगह पे आपने सुना होगा, वो लिखी है आदि शंकराचार्य जी ने।
0: जी हाँ,
1: हम परफॉर्म करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं कि आदि शंकराचार्य ने वो स्तुति लिखी हुई है।
0: ओके, अरे वाह क्या बात है, आज इतना इतना अच्छा आपका इंटरव्यू रहा है। देखिए हमारे पास समय की कमी है, 10:52 हो चुके हैं। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा जाते जाते कि आप हमारे

0: अरे सारे श्रोताओं को गरबा के बारे में डांस की टिप्स तो आपने दे दी ही, बट गरबा के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी साझा की। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं तो यही कहूंगा कि बस सेलिब्रेट करते रहिए, म्यूजिक का मजा लीजिए, हैप्पीनेस स्प्रेड कीजिए।
0: वाह क्या बात है, आपने भी अपनी बातों के साथ इतना हैप्पीनेस स्प्रेड किया है कि हमें हमारे सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप पर इतने सारे मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं। हमारे एक साथी है राकेश माथुर, पुणे से हमें सुन रहे हैं। वो तो कहते हैं कि आरजे अमित जी, ये इंटरव्यू इतना प्यारा लगा कि घर बैठे आपके गानों के साथ डांस करने का मन कर रहा है। आप 11 से 2 और 5 से 8 के बीच के शो में क्यों नहीं आते? तो उनसे मैं कहना चाहूँगा, देखो मैं 11 से 2 में तैयारी करता हूँ शाम की, और 5 से 8 में तो मैं गरबा खेलने जाता हूँ, इसलिए नहीं आ पाऊंगा। बस आज मेरा भी जाने का समय हो चुका है। गोपी जी, आप कीमती समय में से वक्त निकालकर हमारे संग जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहते हैं
1: आपका भी बहुत शुक्रिया,
0: जी,
1: और एफएम चैनल का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाकर जो मुझे पता है वो लोगों तक पहुँचाने की मदद की।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलिए इसी के साथ हम गोपी जी को बाय बाय कहते हुए आपको आखिरी गाना सुनाते हैं, और इस गाने के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ठीक 11 बजे आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, और समाचार के उस पार हमारे अगले आरजे साकेत आप सभी से बातें करने के लिए तैयार होंगे। मुझे यानी आरजे अमित को दीजिए इजाजत, चलो हमें भी गरबा खेलने जाना है। बाय बाय, स्टे सेफ, बी हैप्पी, टेक केयर, बोलो अम्बे माते की जय।

यह आकाशवाणी के मुंबई केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आज आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर विजयवाड़ा जाएंगी। वो कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया अगले सप्ताह भारत की यात्रा पर आएंगी। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार इस दौरान वो मुंबई और जामनगर भी जाएंगे। महाराष्ट्र राज्य खादी और ग्राम उद्योग मंडल की ओर से मुंबई में बृहन मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय के उपहार गृह परिसर में खादी और ग्राम उद्योग उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इसमें खादी के रेडीमेड कपड़े, शहद, पापड़, आचार और विभिन्न खाद्य पदार्थों सहित कई उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। अब सुनिए खेल समाचार। भारत के आनंद कुमार वेलू कुमार ने पारगाव में आयोजित विश्व स्केटिंग गेम्स 2026 की 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तमिलनाडु के 23 वर्षीय स्पीड स्केटर ने यह स्पर्धा 40.856 सेकंड में पूरी की। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। लीजिए अब जुड़ते हैं FM रेनबो में ब्रेक फ्री से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours. Akashwani FM Rainbow Musically
1: yours. Mumbai, अब तो हवाओं में एक अलग सी ही महक है, एक अलग सी ही पॉजिटिविटी है, और ये महक है त्योहारों की। बिल्कुल, त्योहारों ने दस्तक दे दी है और पूरे हिंदुस्तान में नवरात्रि की शानदार धूम देखने को मिल रही है। मेरी माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन के सारे कष्ट दूर हों और आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, और आपकी जो आपके चेहरे की मुस्कान है ना, है ना, है ना, ये हमेशा बनी रहनी चाहिए। और आपकी मुस्कान और खुशी को दुगना करने के लिए हम भी तो हैं, उसकी कोशिश हम भी तो करते हैं, अच्छी अच्छी बातों के जरिए और सबसे ज़रूरी अच्छे अच्छे गानों के जरिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो स्वागत है आप सभी का ब्रेक फ्री में। मैं हूं आपका रेडियो मित्र साकेत आपके साथ, और हर बार की तरह ब्रेक फ्री में आज भी करेंगे बहुत सारी बातें। इसके बाद 12 बजे समाचार होंगे, 12 बजे के बाद समाचार के बाद हम जुड़ेंगे म्यूजिक कैफे से, और दोपहर 12:30 पर आपके लिए प्रस्तुत होगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, और फिर एक बजे के बाद आप सभी का फेवरेट आर हिट एंड हॉट, जिसमें होंगे केवल आपके पसंद के नगमे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है।

0: को रंगी बनाएंगे।
1: सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो,
2: म्यूजिकली योर्स।
3: वेलकम बैक टू एफएम रेनबो ओनली ऑन 107.1 एफएम म्यूजिकली योर्स, और आप सुन रहे हैं ब्रेक फ्री। मैं हूं आपका रेडियो मित्र साकेत आपके साथ। परफेक्ट, परफेक्शन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये शब्द हमने कभी ना कभी सुने ही होंगे। दिन में कभी ना कभी हम ये वर्ड सुनते ही है, कभी किसी काम के सिलसिले में, कभी किसी और के मुख से, या तो कभी खुद ही के मन में। काफी लोग कहते हैं परफेक्ट बनो, परफेक्शन लाओ भाई साहब, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यू हैव टू बी परफेक्ट। लेकिन लेकिन लेकिन जरा सोचिए, कहीं परफेक्ट बनने के चक्कर में हम अपने असली खुद को तो नहीं छिपा रहे? यानी जो वास्तव में हम हैं, हमारी अपनी पर्सनैलिटी है, जो रॉनेस हम में है, नेचुरलिटी हमारे काम में है, वो नहीं जानी चाहिए। ठीक है, गोइंग फॉर द परफेक्शन इज अ वेरी गुड थिंग, परफेक्शन की तरफ बढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेकिन पी से परफेक्शन की तरफ बढ़ते बढ़ते कहीं हम पी से प्रेशर की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, है ना? तो चलिए आज ब्रेक फ्री में इसी पर हम बात करेंगे कि आपको इससे ब्रेक फ्री होना है, लेकिन बातें भी होंगी और गाने भी होंगे। और हाँ, गानों के साथ साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8657661 पर आप मैसेज करिए। और अब आपके लिए बहुत ही प्यारा गाना मैं चलाने वाला हूँ सुखविंदर सिंह की आवाज़ में, जो आप सभी को बहुत पसंद है। लेकिन गाने से पहले हम जाएंगे कमर्शियल ब्रेक पर, Only on FM Rainbow 107.1 FM, musically yours.
4: बात निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी।
5: पगली GPS फॉलो करना, नहीं तो गुम हो जाएगी।
4: अगर गुम हो भी जाओ तो कोई बात नहीं।
5: बिल्कुल, क्योंकि पंछियों के पास भी कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिलें।
4: हाय, ये है FM Rainbow 107.1, यूं ही खट्टी मीठी बातों से जीत लेंगे आपका मन,
5: क्योंकि हम हैं म्यूजिकली।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम।
2: टेन्योर, इंटरेस्ट रेट और ब्याज के ऑप्शंस चुनिए अपनी जरूरत के हिसाब से।
1: मंथली ब्याज के लिए 445 दिन, क्वार्टरली के लिए 446 दिन और कम्युलेटिव ब्याज के लिए 447 दिन।
2: डिपॉजिट टेन्योर के हिसाब से ब्याज दर 7.5% से लेकर 7.30% तक।
1: स्कीम सिर्फ सीमित समय के लिए।
2: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। जीवन करें समृद्ध।
3: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है।
4: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है।
5: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
6: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

इंसान तो गलतियों का पुतला है। बचपन से बड़े होते हुए हम सभी ने ये बात कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। और आप सुन रहे हैं ब्रेक फ्री ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1 एफएम, म्यूजिकली योर्स। और मैं हूं आपका रेडियो मित्र साकेत आपके साथ। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी काम में परफेक्शन लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जाने अनजाने में कभी कभी एक प्रेशर हम अपने ऊपर ले लेते हैं। मन में बस एक ही बात चल रही होती है कि गलती नहीं होनी चाहिए, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, 1% भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और हम पूरी तैयारी के साथ भी जाते हैं, सब कुछ अच्छे से करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती है। और फिर हम खुद ही को दोष देने लगते हैं कि अरे ये गलती कैसे हो गई, मुझसे ऐसा कैसे हो सकता है, व्हाई आई एम नॉट बिकमिंग परफेक्ट एट ऑल। कोई बात नहीं, हो जाती है गलतियां। गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? और कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अगर किसी काम में गलती हो गई है तो खुद को बार बार दोष देने के बजाय एक बार रुक कर सोचिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं ताकि अगली बार और बेहतर कर सकूं। लेकिन उस गलती का इतना प्रेशर ले लेना कि हम खुद ही पर शक करने लगे, ये सही नहीं है। क्योंकि परफेक्शन के चक्कर में गलती ना करने का डर बढ़ना नहीं चाहिए, फिर वो परफेक्शन नहीं है, प्रेशर बन जाता है। गलती से सीखकर आगे बढ़ना ही आपकी ताकत है, क्योंकि हमें हर बार परफेक्ट नहीं होना, हमें हर बार कुछ अलग करना है, कुछ नया सीखते हुए आगे बढ़ना है। और बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ, लिसनर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगा, आकांक्षा मनोज सिन्हा जी है, विजेंद्र घटोल जी हैं, यश शिंदे जी है, संजय दर्शन जी, राकेश माथुर जी है। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। और अब आपके लिए मैं ऑस्कर विनिंग गाना प्ले कर रहा हूँ फ्रॉम द मूवी RRR। स्टे ट्यून्ड ऑन एफएम रेनबो 107.1।

0: कोई भी कार लीजिए, कॉस्मोस कार लोन तो है ही। कार लोन 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% से, टेन्योर 7 साल तक, नियम व शर्तें लागू, 0 प्रोसेसिंग फी। सफर सुहाने साथ कॉस्मोस कार लोन के। आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। जीवन करें समृद्ध।
1: मक शुरू करो या इन्वेस्टिंग साधन।

0: कडून इन्व्हेस्टर जागरूकता उपक्रम. अधिक माहितीसाठी सेबी इन्व्हेस्टर वेबसाइट वर विजिट करा किंवा सेबी सारथी ऐप डाउनलोड करा.
1: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है.
2: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है.
3: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है.
4: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है. कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग. योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20. भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी.

ऐसा दीवाना हुआ है दिल आपके प्यार में. वेलकम बैक टू एफएम रेनबो 107.1 एफएम, म्यूजिकली योर्स. और आप सुन रहे हैं ब्रेक फ्री. मैं हूं आपका रेडियो मित्र साकेत आपके साथ. एक लाइन है, डोंट ड्वेल ऑन थिंग्स फॉर टू लॉन्ग, वेदर इट्स फेलियर और सक्सेस, लर्न टू लेट गो एंड मूव फॉरवर्ड. यानी जिंदगी में चाहे सफलता हो या असफलता हो, किसी भी चीज़ को हमें ज़्यादा देर तक सीरियसली नहीं लेना चाहिए. और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हों, फिल्म स्टार्स हो या बिजनेस पर्सनैलिटीज़ हो, हर किसी की ज़िंदगी में अच्छा और मुश्किल दौर आता ही आता है. बट दे नो थिंग्स लेट गो वेरी वेल, दे लेट गो थिंग्स वेरी इजीली. और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हमारी इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की कैप्टन स्मृति मांदना ने एक पॉडकास्ट के दौरान अपनी एक पर्सनल अप्रोच के बारे में बताया था, जिसे वो कहती हैं 30 मिनट रूल. उन्होंने बताया था कि वो किसी भी बात को लेकर बहुत लंबे समय तक उलझी रहना पसंद नहीं करती, चाहे क्रिकेट में कोई गलती हो या जिंदगी से जुड़ी कोई परेशानी हो. वो अपने इमोशंस को महसूस करती है, लेकिन कोशिश करती है कि बहुत देर तक उसमें उलझी ना रहे. यानी मोटा मोटा 30 मिनट से ज़्यादा उस बात को तवज्जो ना देनी. हमें भी अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को लेट गो करना आना चाहिए. लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें दुखी नहीं होना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को दबा लेना चाहिए. नहीं, कभी कभी हो सकता है कि हमें किसी चीज़ में सफलता ना मिले तो दुख होगा, बिल्कुल होना भी चाहिए. खुद को थोड़ा समय दीजिए, अपनी फीलिंग्स को समझिए और फिर सोचिए कि अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं. और अगर सक्सेस मिली है तो खुशी मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए, मौज कीजिए. लेकिन उस सक्सेस को इतना भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए कि आप अगला कदम लेना ही भूल जाएं, आगे बढ़ना ही भूल जाएं. क्योंकि सक्सेस हो फेलियर हो, दोनों ही जिंदगी का हिस्सा है. जो बीत गया उससे सीखिए और जो अच्छा हुआ उसका जश्न मनाइए और जल्दी से जल्दी अपने अगले कदम की तरफ बढ़ जाइए. और बहुत सारे श्रोता भी अपने कदम हमारी तरफ बढ़ाते रहते हैं. श्रोताओं के नाम मैं लेना चाहूँगा, अशोक पाटिल जी है, शुभ लक्ष्मी जी है, प्रमोद जी है, फिरोज सिगानपुरिया जी है, पंकज मोहड़ी जी है अमरावती से. थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए. और अब आपके लिए जावेद अली की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा रोमांटिक ट्रैक आ रहा है. स्टे ट्यून्ड ऑन FM Rainbow 107.1 FM, musically yours.

0: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम।
1: टेन्योर, इंटरेस्ट रेट और ब्याज के ऑप्शंस चुनिए अपनी जरूरत के हिसाब से।
0: मंथली ब्याज के लिए 445 दिन, क्वार्टरली के लिए 446 दिन और कम्युलेटिव ब्याज के लिए 447 दिन।
1: डिपॉजिट टेन्योर के हिसाब से ब्याज दर 7.5% से लेकर 7.30% तक।
0: स्कीम सिर्फ सीमित समय के लिए।
1: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।
2: भावा, दररोज 6 ते 7 कोटी वाहनात इंधन भरलं जातं। देशात 23 कोटीहून अधिक गाड्या 2.5 वर्षांपासून E20 वर चालत आहे।
3: सगळं तर एकदम व्यवस्थित चाललंय।
2: तेच तर, काही समस्या असती तर आतापर्यंत समोर आली असती। अफवांवर नाही, तथ्यांवर विश्वास ठेवा।
4: भारत सरकारचा उपक्रम तेल विपणन कंपन्यांद्वारे जनहितार्थ प्रसारित।
5: ACP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
6: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

ना रुकना है ना थकना है, बस आगे ही बढ़ते जाना है। जिंदगी एक सफर है प्यारे, यहां हर दिन कुछ नया पाना है। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो और ब्रेक फ्री आप सुन रहे थे ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1 एफएम, म्यूजिकली योर्स। और मैं हूं आपका रेडियो मित्र साकेत आपके साथ। तो दोस्तों, आज ब्रेक फ्री में हमने बात की परफेक्शन की, और बिल्कुल परफेक्ट बनने की कोशिश करने में कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और सच कहूं तो बेहतर बनना जरूरी है, वो भी खुद के लिए। लेकिन किसी दूसरे के लिए खुद को बदलते रहना, किसी और के पसंद के हिसाब से परफेक्ट बनने की कोशिश करना, ये ठीक नहीं है। जैसे कोई चाहता है कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं, मैं ऐसा दिखूं, मैं ऐसी दिखूं, कोई चाहता है कि मेरा व्यवहार ऐसा हो, यानी किसी और के लिए खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश करना, ये सही नहीं है। एंड ऑन अदर हैंड, हमें कंपैरिजन में भी नहीं जाना है कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, वो ऐसा दिखता है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। ठीक है, दूसरों से इंस्पिरेशन लेना भी अच्छी बात है, लेकिन खुद की तुलना करके अपने आप को कम आंकना, वो सही नहीं है। आप सभी बढ़िया हैं, सभी शानदार हैं, जैसे हैं खुद को एक्सेप्ट करिए। ईश्वर ने हम सभी को अलग बनाया है और बेमिसाल बनाया है। हम सभी की अपनी पहचान है, और आपकी खूबसूरती इस बात में है कि आप कैसे दिखते हैं, ये नहीं कि आप क्या हैं, आप कितने ताकतवर हैं, उस पे है। आप जैसे हैं अच्छे हैं, इसलिए खुद को बेहतर बनाइए, अपने सपनों की तरफ मेहनत करिए, और हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर इंसान बना हूं? अगर जवाब है हाँ, तो यकीन मानिए आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अब आपके लिए दो बैक टू बैक गाने मैं प्ले कर रहा हूं, आपकी खिदमत में हाजिर है। इसके बाद 12 बजे हम जुड़ेंगे समाचार से, और समाचार के बाद हम मिलेंगे म्यूजिक कैफे में। एंजॉय करिए अरिजीत और निकिता गांधी की आवाज में गाना ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1 एफएम, म्यूजिकली योर्स।

ये आकाशवाणी का मुंबई केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और आसियान एक शांतिपूर्ण, स्थिर और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में सम्मान हित साझा करता है। आज सुबह नई दिल्ली में आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आसियान भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का केंद्र है। उन्होंने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सम्मान भागीदार के रूप में काम करने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। दिल्ली की विशेष अदालत में आज सीजीपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रंका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पार्टी के एक अन्य नेता अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने तीनों नेताओं को जंतर मंतर में प्रवेश करने की कोशिश के आरोप में हिरासत में ले लिया था। एक दिन पहले ही जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित सूची से हटा दिया गया है। भारत में वर्ष 2015 से 2024 के बीच टीबी के नए मामलों में 21% कम दर्जी हुई है, जबकि वैश्विक स्तर पर यही कमी 12% रही है। देश में टीबी के इलाज का दायरा बढ़कर 92% हो गया है, जबकि वैश्विक औसत 78% है। टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अब तक 28 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। मुंबई उपनगर के जिलाधिकारी सौरभ कटियार को महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के सचिव पद का आंतरिक कार्यभार सौंपा गया है। राज्य सरकार ने आज ये अधिसूचना जारी की। आयोग के सचिव महेंद्र हरपालकर का कार्यकाल प्रशासकीय कारणों से समाप्त करने पर सौरभ काटियार की नियुक्ति की गई है। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। अब से थोड़ी क्षण में आप जुड़ेंगे आकाशवाणी केंद्र के अगले प्रसारण ब्रेक फ्री में। कृपया प्रतीक्षा करें।

ला ला। आज से लगभग 57 साल पहले एक सुरीली आवाज में गाया गया ये दिल को छू लेने वाला आलाप हम तक पहुंचा था, और आज भी जब हम इस गाने को सुनते हैं तो एक ही चेहरा हम सबके सामने आता है। जी हाँ, लेजेंडरी किशोर दा का, लेजेंडरी किशोर दा, लार्जर देन लाइफ पर्सन, अ लेजेंडरी सिंगर, एन एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर, फिल्म प्रोड्यूसर, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे किशोर दा। स्वागत है आप सभी का म्यूजिक कैफे में, ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1 एफएम, म्यूजिकली योर्स। और कल 13 अक्टूबर को किशोर दा की पुण्यतिथि थी। किशोर दा ने हिंदी संगीत में बहुत बड़ा योगदान दिया, हम सभी जानते हैं। और कहा जाता है कि किशोर दा ने बकायदा सिंगिंग की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन उनके आवाज में वाकई एक जादू था कि उन्होंने करोड़ों दिलों पर और उन करोड़ों दिलों के कोरे कागज पर अपने गीतों से हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम अमर कर दिया। तो आज म्यूजिक कैफे में बातें होंगे किशोर दा की, गाने होंगे किशोर दा के, और हां, किस्से भी होंगे किशोर दा के, क्योंकि दोस्तों उनके गाने जितने मशहूर है ना, उनके किस्से भी उतने ही मशहूर है। कहीं नहीं जाइएगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए किशोर दा की आवाज में ये बहुत ही प्यारा गाना, जिसका मैंने अभी आलाप गाया था, जानता हूं अच्छा नहीं गाया था, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए प्रस्तुत है।

0: बात निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी।
1: पगली जीपीएस फॉलो करना, नहीं तो गुम हो जाएगी।
0: अगर गुम हो भी जाओ तो कोई बात नहीं।
1: बिल्कुल, क्योंकि पंछियों के पास भी कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिलें।
0: हाय, ये है एफएम रेनबो 107.1। यूं ही खट्टी मीठी बातों से जीत लेंगे आपका मन,
1: क्योंकि हम हैं म्यूजिकली यर्स।
2: ओ जीते लंबे लंबे सिल की जय बार, ओ कुड़ी कौन नचदी कौन नचदी।
3: यू आर लिसनिंग एफएम रेनबो ओनली ऑन 107.1 एफएम म्यूजिकली यर्स, और आप सुन रहे हैं ब्रेक फ्री। और आज हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे किशोर दा की, और कल किशोर दा की पुण्यतिथि थी। शुरुआत किशोरदा ने एज एन एक्टर की थी और बहुत अच्छी फिल्में बनाई। शुरुआत में बहुत अच्छी सुपर हिट्स इन्होंने दी, जैसे चलती का नाम गाड़ी, बहुत अच्छी फिल्म है। एंड एज अ सिंगर किशोरदा ने सबसे पहले गाया था देव साहब की दूसरी या तीसरी फिल्म 1948 में आई थी, फिल्म का नाम था जिद्दी। जिद्दी फिल्म में किशोरदा ने सबसे पहले गाया था, गाने के बोल है, मरने की दुआ क्या मांगू। और काफी वक्त तक किशोर दा ने सिर्फ देवानंद साहब के लिए गाया और खुद के लिए गाया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब किशोर दा की फिल्में चल नहीं पा रही थी, बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, और किशोर दा भी धीरे धीरे लाइमलाइट से दूर होते जा रहे थे। 50 से 60 के दशक तक ही वॉज ओनली एन एक्टर एंड अ फिल्म मेकर, नॉट अ फुल फ्लैश प्लेबैक सिंगर, यानी साल में 7-8 गाने गा लेते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उनकी कुछ लाइबिलिटीज बढ़ने लगी, थोड़ा सा कर्ज हो गया। इसके बाद उन्होंने रुक किया अपनी जिंदगी के सबसे अजीज शख्सों में से एक, एसडी बर्मन साहब का। और एसडी बर्मन साहब ने 1969 में एक फिल्म बन रही थी, उसमें उनसे गाने गवाए। और उस फिल्म में भी एक नौजवान एक्टर था, जो अभी इसने कोई बहुत अच्छी फिल्म नहीं दी थी, कोई बहुत बड़ी सुपरहिट नहीं दी थी, अनएस्टेब्लिश्ड एक्टर था। और जब वो फिल्म आई ना, तो वो लड़का रातों रात स्टार बन गया, सुपरस्टार बन गया। फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई, फिल्म का नाम था आराधना, जिसका गाना भी हमने सुना। फिल्म से राजेश खन्ना साहब रातों रात सुपरस्टार बन गए, एंड किशोरदा, हर तरफ किशोरदा किशोरदा का ही नाम गूंजा। किशोरदा का हर एक गाना फिल्म का ब्लॉकबस्टर हुआ और लोगों के दिलों में बस गया, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर क्या था, किशोरदा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, हर तरफ उनकी आवाज गूंजने लगी। आराधना के बाद लगभग हर हीरो की किशोरदा आवाज बने, और क्या बखूबी बने, हर जगह किशोरदा ने राज किया। अब चलिए किशोरदा का एक और बेहतरीन गाना मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूं, और वापस आकर किशोरदा का एक बहुत ही कमाल का किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा था, किशोरदा के गाने जितने मशहूर हैं उतने ही उनके किस्से भी। बने रहिए हमारे साथ ऑन एफएम रेनबो 107.1 एफएम म्यूजिकली योर्स।

0: हर किसी को चाहिए अपने सपनों का घर और हर किसी को चाहिए किफायती ब्याज दर। कॉस्मोस होम लोन, ब्याज दर 7.80% से शुरू, 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध, टेन्योर 25 साल तक और 0 प्रोसेसिंग फी। नियम व शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
2: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: भावा, दररोज 6 ते 7 कोटी वाहनात इंधन भरलं जातं। देशात 23 कोटीहून अधिक गाड्या 2.5 वर्षांपासून E20 वर चालत आहे।
4: सगळं तर एकदम व्यवस्थित चाललंय।
3: तेच तर, काही समस्या असती तर आतापर्यंत समोर आली असती। अफवांवर नाही, तथ्यांवर विश्वास ठेवा।
5: भारत सरकारचा उपक्रम, तेल विपणन कंपन्यांद्वारे जनहितार्थ प्रसारित।
6: टेंशन के काले बादलों के बीच खुशियों का रेनबो अगर सजाना हो तो सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।
7: आप सुन रहे हैं म्यूजिक कैफे ओनली ऑन 107.1 FM म्यूजिकली योर्स, और मैं हूं आपका रेडियो मित्र साकेत आपके साथ। भाई, जैसा कहते हैं कि किशोरदा के गानों में जितना दीवानापन होता था, मस्ती होती थी, उतनी ही मस्ती उनकी पर्सनैलिटी में भी होती थी। जिस किसी भी स्टूडियो में गाना गाने जाते थे, झूमते हुए जाते थे, हंसते हुए जाते थे, और काफ़ी बातें वो गाकर ही कहते थे। चलिए, इससे जुड़ा मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँ। देवानंद साहब की फिल्म जोशीला का एक मशहूर गाना है, किसका रास्ता देखे। किस्सा कुछ यूं है कि गाने की रिहर्सल पूरी हो चुकी थी। आरडी बर्मन साहब, हमारे पंचम दा और किशोर दा के बेटे अमित कुमार साहब, देवानंद साहब, सभी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए रेडी थे। लेकिन किशोर दा तो भाई किशोर दा आराम से बैठे थे, टेक देने का नाम ही नहीं ले रहे थे। देवानंद साहब ने पंचम दा से पूछा, अरे भाई पंचम, क्या हुआ, किशोर रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहा, टेक क्यों नहीं कर रहा। अब पंचम दा ने किशोर दा से पूछा, दादा टेक करें? तो किशोर दा ने अपने ड्राइवर कम सेक्रेटरी अब्दुल से पूछा और इसी गाने के अंदाज में पूछा, अब्दुल अब्दुल पैसा मिला क्या, जल्दी से बता दे। अब्दुल ने कहा, हाँ दादा मिल गया, चलो टेक करते हैं। किशोर दा पेमेंट को लेके बहुत ही पर्टिकुलर थे, और मजे की बात यह है कि वो पैसों को मजाक मजाक में चाय कहकर पुकारते थे। जिस किसी भी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे तो कहते थे कि चाय लेकर आओ, फटाफट चाय लेकर आओ। ये थे किशोर दा, अपने अंदाज के बादशाह, मस्ती भी अपनी शर्तों पर और काम भी अपने अंदाज पर। और एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, वॉयलेट जी, जिन्होंने आराधना फिल्म का गाना कोरा कागज़ मेरा, उसको बहुत ही पसंद किया, क्योंकि जब वो टीनेजर थे तो ये फिल्म वो सिनेमा में देख कर आए थे। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। अब चलिए, किशोर दा की आवाज़ में जोशीला फिल्म से किसका रास्ता देखे आपके लिए।

0: बात निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी।
1: पगली जीपीएस फॉलो करना, नहीं तो गुम हो जाएगी।
0: अगर गुम हो भी जाओ तो कोई बात नहीं।
1: बिल्कुल, क्योंकि पंछियों के पास भी कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिलें।
0: हाय, ये है एफएम रेनबो 107.1। यूं ही खट्टी मीठी बातों से जीत लेंगे आपका मन,
1: क्योंकि हम हैं म्यूजिकली यर्स।
2: ओ जीते लंबे लंबे सिल की जय बाल, ओ कुड़ी कौन नचदी कौन नचदी।
1: आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो, और एफएम रेनबो में शो ऑन है म्यूजिक कैफे, और मैं हूं आपका रेडियो मित्र साकेत आपके साथ। किशोर दौर उनके योडलिंग का जो अंदाज था ना, That is still unmatchable। और हिंदी सिनेमा में योडलिंग को इंट्रोड्यूस करना और उसको पॉपुलर बनाने का क्रेडिट भी किशोर दा को ही जाता है। लेकिन ये हुआ कैसे? दरअसल किशोर दा साहब के भाई साहब

भाव, अनूप कुमार जी के पास बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन सिंगर के ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स थे जिसमें यूडलिंग का इस्तेमाल हुआ था, और किशोरदा को ये टेक्निक इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस टेक्निक को बिना शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग के, जैसे आपको बताया था कि किशोरदा ने शास्त्रीय संगीत की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, इस ट्रेनिंग को, इस संगीत को, इस टेक्निक को इतना उन्होंने तराशा, इतनी मेहनत की कि इसमें महारत हासिल कर ली। इसके बाद एस डी बर्मन साहब और आर डी बर्मन साहब के साथ मिलकर इस शैली को हिंदी सिनेमा में अमर बना दिया। यही तो खासियत थी किशोरदा की। एक तरफ जहां किशोरदा ने जिंदगी एक सफर है सुहाना ऐसे कमाल के गाने गाए जिसमें एक फुल एनर्जी थी, एक वाइब थी, और वहीं दूसरी तरफ ऐसे गाने भी गाए जिसमें बहुत प्यारी सॉफ्टनेस थी, एक कमाल की गहराई थी उनकी आवाज़ में, जैसे पल पल दिल के पास, ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप, और बहुत से ऐसे गाने भी गाए जो बिल्कुल शास्त्रीय संगीत पर आधारित थे, जैसे मेरे नैना सावन भादो। आज किशोरदा हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक सच्चा कलाकार अपनी कला के जरिए हमेशा जिंदा रहता है। किशोरदा हमारे गानों में, हमारी यादों में और हमारे दिलों में हमेशा जिंदा थे, हैं और रहेंगे। और अब किशोरदा का एक और गाना आपके लिए, और गाने के बाद हम जुड़ेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग से। बने रहिए हमारे साथ।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।
1: म्यूजिकली योर्स।

0: इलेक्शन के काले बादलों के बीच खुशियों का रेनबो घर सजाना हो तो सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।
1: ये आकाशवाणी का मुंबई केंद्र है। दोपहर के 12:30 होने को है। डीजे आपके लिए प्रस्तुत है NCERT स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। अजीत का नमस्कार और जोहार। श्रोताओं, सुविचार या अच्छे विचार हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का कारण होते हैं और जीवन में सही राह पर चलने में हमारी सहायता करते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुविचार। भेजने वाले हैं माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी। लिखते हैं, वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, अपने संस्कार कभी मत बदलिए, क्योंकि पहचान नाम से नहीं इंसान के व्यवहार से बनती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत विचार के लिए। आपको हमारा आभार। आइए अब जानते हैं किन किन श्रोताओं ने हमें भेजा है संदेश और क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूँ और आपका कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आता है। अगला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू और रविंद्र रौनक सेन। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता भाई अजीत जी और बहन विमलेश जी को सादर अभिवादन, नमस्कार। आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वाकई काबिले तारीफ रहते हैं, अतः हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। हम हैं सेन परिवार छत्तीसगढ़ से। सेन परिवार का उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार कि आप हमारे कार्यक्रम को सपरिवार सुनते हैं। अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, गांव पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी का, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी। लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी, उमंग कार्यक्रम सुन रहे हैं। शिक्षाविद अबला बोस जी पर कार्यक्रम सुना एवं बहुत ही पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी एवं मैडम विमलेश जी, हम आपका दिल की गहराइयों के साथ हृदय से आभार प्रकट करते हैं, साथ ही साथ एनसीईआरटी की पूरी तकनीकी टीम को। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो श्रोताओं, चलिए एक बार फिर से चलते हैं आविष्कारों की दुनिया में। खासकर उन आविष्कारों की चर्चा इस सप्ताह हम कर रहे हैं जिनके बारे में अक्सर हम सोचते भी नहीं कि उनका भी आविष्कार हुआ होगा। तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे पेंसिल के बारे में। एक पतली सी लकड़ी और बीच में काला सिक्का, इससे हम जो चाहे लिख ले या स्केच बना ले। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसकी खोज कैसे हुई होगी? तो श्रोताओं, ये है छोटी पेंसिल की कहानी और इसकी कहानी है बड़ी तूफानी। चौंकिए मत, मैंने कहा इसकी कहानी तूफानी है, क्योंकि पेंसिल का जन्म ही एक भयंकर

भयंकर आंधी तूफान के कारण हुआ था। तो जरा पूछिए ना, वो कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। बात है 1564 की। इंग्लैंड के बोरोडेल नाम के एक इलाके में जोरदार आंधी आई। एक विशाल पेड़ जड़ से उखड़ गया। जब बाद में स्थानीय चरवाहे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उखड़े हुए पेड़ की जड़ों के नीचे एक अजीब काले रंग का चमकदार पत्थर दबा हुआ था। जब उन्होंने उसे छुआ तो उनके हाथ थोड़े काले हो गए। उन्होंने पाया कि उस पत्थर से किसी भी चीज पर आसानी से लगभग काला गाढ़ा निशान बन जाता है। तो श्रोताओं, आपको पता है सबसे पहले उसका क्या इस्तेमाल हुआ? उसका इस्तेमाल हुआ भेड़ों की पीठ पर निशान लगाकर अपनी अपनी भेड़ों को पहचानने का। वे चरवाहे उसका उपयोग अपनी भेड़ों की पहचान करने के लिए करने लगे। लेकिन उस समय एक मजेदार गलतफहमी भी हुई। वैज्ञानिकों को लगा कि यह काला पदार्थ सीसे यानी लेड का कोई नया रूप है। उन्होंने इसे नाम दे दिया ब्लैक लेड। इसी दुविधा में हम आज भी इसे कभी कभी लेड पेंसिल भी कह देते हैं। जबकि सच्चाई ये है श्रोताओं, ये वैज्ञानिक सच्चाई है कि इसमें सीसा रत्ती भर भी नहीं होता। तो वास्तव में वो था क्या, आइए जानते हैं। साथियों, वो था ग्रेफाइट यानी शुद्ध कार्बन का एक रूप। अब समस्या ये थी कि ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता था। हाथ में पकड़ो तो हाथ काले और जरा सा जोर पड़ते ही टूट जाए। तो पहले लोगों ने इस पर थोड़ी मिट्टी मिलाई जिससे ये थोड़ा ठोस हो गया। फिर उन्होंने इससे लिखना शुरू किया। तो इस तरह शुरू हुई ग्रेफाइट से पेंसिल की पहली लिखाई। धीरे धीरे इस पर नवाचार होते रहे, प्रयोग होते रहे। फिर इटली के एक दंपत्ति ने सोचा कि इसे लकड़ी के खोल में बंद कर दिया जाए। उन्होंने लकड़ी का एक ठोस टुकड़ा लिया, बीच में पतली नाली बनाई और उसमें ग्रेफाइट को रख कर लिखने लगे। यानी आज की पेंसिल का ढांचा यहीं से आया। लेकिन अब भी लिखने में समस्या थी। तब मैदान में आए एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक निकोलस जैक्स कोंटे। उन्होंने ग्रेफाइट के चूरे को चिकनी मिट्टी, एक विशेष रसायन और पानी के साथ मिलाकर गूंथ लिया। उसकी पतली छड़े बनाई और उसे भट्टी में पका दिया। अब ये ठोस हो गई जिससे लिखने में आसानी होने लगी। जी हाँ, और सबसे रोचक बात ये हुई कि मिट्टी की मात्रा घटा बढ़ाकर उन्होंने पेंसिल को हल्का या गाढ़ा लिखने वाला बना दिया और उन्हें HB, 2B और 4B के नाम से वर्गीकृत कर दिया। HB आप अक्सर देखते होंगे पेंसिल्स में लिखा होता है HB। तो आज आपको बता दूं HB का अर्थ क्या होता है। HB यानी हार्ड ब्लैक। इसकी लिखावट मध्यम होती है। कुछ पेंसिलों में आप लिखा हुआ देखेंगे 2B, तो इसका अर्थ है ज्यादा गहरी लिखाई। इसे ड्रॉइंग के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। और आपने एक पेंसिल और देखी होगी, अगर आपको पेंसिल्स का शौक है तो आपने जरूर देखा होगा, लिखा होता है 4B। 4B का अर्थ होता है बहुत गहरी छाप वाली पेंसिल। तो साथियों, है ना मजेदार जानकारी। बस अब पेंसिल तो बन ही गई। समस्या थी कि लिखे हुए को मिटाना पड़े तो क्या किया जाए। पता है, पहले लोग पेंसिल की लिखावट मिटाने के लिए बासी ब्रेड के टुकड़ों का इस्तेमाल करते थे। फिर 1858 में एक अमेरिकी आविष्कारक हाइमन लिपमैन ने पेंसिल के पिछले सिरे पर रबर जड़ दिया और पेटेंट करा लिया। बस बन गई पूरी पेंसिल। तो साथियों, यहाँ तक की जानकारी तो मिल गई। अब कुछ बहुत रोचक है आपके लिए। क्या आपके मन में ये प्रश्न आता है कि पेंसिल नाम भला कैसे पड़ा? तो आपको बता दें, पेंसिल शब्द की जड़ लैटिन भाषा में है। उन दिनों में चित्र बनाने के लिए इस्तेमाल में आने वाले छोटे ब्रश को पेंसिलस कहते थे। बाद में जब ग्रेफाइट से लिखने वाले उपकरण का इस्तेमाल शुरू हुआ तो उसके लिए भी पेंसिल शब्द प्रचलित हो गया। तो श्रोताओ, ये थी तूफान, चरवाहों और वैज्ञानिकों के नवाचार की रोचक कहानी। अब तो भाई इस पेंसिल से लिखने में और भी अधिक मजा आएगा, है ना जी। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी पेंसिल के बारे में। आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, पेंसिल नाम किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, पेंसिल नाम किस भाषा से आया है? श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारत तू है हमको प्यारा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है हमको प्यारा, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, भारत पाकिस्तान के युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित इस कार्यक्रम में रोमांचक विवरण है कि किस प्रकार उन्होंने शत्रु पक्ष के कई टैंकों को ध्वस्त कर दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें इस साहसिक कार्य के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का यह सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे।

0: अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
2: वो तो ठीक है साहब,
1: और अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
3: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
4: हाँ।
3: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
4: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
3: जी।
4: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
3: जानता हूं मां।
4: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
3: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
4: जाओ बेटा।
0: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था। जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया। और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
5: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
6: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
5: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
6: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
7: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
6: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
8: यस सर।
6: नाथ सिंह निशाना साधो।
7: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
6: फायर।
5: सर
6: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
8: जी।
6: फायर।
7: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
6: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
7: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीरगति पाई।

हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की।

0: और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है, क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों-ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया त्यों-त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई, पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं यह समझ नहीं आ रहा। यह बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से, जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम।

जी हाँ, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एफएम रेमो में, ओनली ऑन 107.1 एफएम, म्यूजिकली योर्स। और स्वागत है आप सभी का आप सभी के फेवरेट आर हिट एंड हॉट में, और यहाँ होंगे केवल आपके पसंदीदा नगमे। लेकिन उससे पहले, आजकल फिल्मों में किसी भी बड़े स्टार का नाम हो तो फिल्म को फाइनेंस इजीली मिल जाता है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब किसी फिल्म की किस्मत कोई फिल्म स्टार या डायरेक्टर नहीं, दो म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी, बल्कि एक म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी लिखती थी, इन्हीं से फिल्म की किस्मत बन जाती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी सिनेमा की मशहूर संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन की। इनका नाम ही प्रोड्यूसर्स और फाइनेंसर्स के लिए एक बड़ा भरोसा था। यहाँ तक कि फिल्म्स के प्रमोशंस के लिए शंकर जयकिशन के पोस्टर लगाए जाते थे, होर्डिंग्स लगाए जाते थे। सोचिए, ये पॉपुलरिटी थी इनकी। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर जो पॉपुलैरिटी शंकर जयकिशन ने पाई है ना, वो उसके बाद किसी ने नहीं पाई। और कल यानी 15 अक्टूबर को शंकर जयकिशन जी की जोड़ी में से शंकर जी की बर्थ एनिवर्सरी है। तो अगर आप चाहें तो शंकर जयकिशन जी के गाने हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या कोई और भी गाना किसी भी फिल्म का, किसी भी आपके मन पसंदीदा सिंगर का आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी की आवाज़ में ये नगमा आपके लिए, और इसके बाद आपकी रिक्वेस्ट, यू से इट वी प्ले इट।

आप सुन रहे हैं FM रेनबो हिट एंड हॉट। आज की पहली रिक्वेस्ट हम प्ले कर रहे हैं दीपा पालकर जी की। इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है श्री 420 से प्यार हुआ इकरार हुआ, शंकर जयकिशन जी का रचा हुआ बेहद खूबसूरत गाना।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
1: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।
2: दिल से सुनती आये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां।
3: नेक्स्ट रिक्वेस्ट हम हिट एंड हॉट में प्ले कर रहे हैं फिरोज सिगानपुरिया जी की। इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है राज कपूर साहब और राजेंद्र कुमार साहब की फिल्म संगम से ये गाना। शंकर जयकिशन साहब ने बहुत ही प्यारा गाना कंपोज करा है। स्टे ट्यून ऑन एफएम रेनबो 107.1 एफएम। बहुत सी रिक्वेस्ट हमें आ रही है, कोशिश करेंगे हम जितना हो सके रिक्वेस्ट प्ले कर पाए।

0: नहीं नहीं नहीं।
1: आप सुन रहे हैं हिट एंड हॉट ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1 एफएम म्यूजिकली योर्स, और मैं हूं आपका रेडियो मित्र साकेत आपके साथ। 50, 60 और 70 के दशक में शंकर जयकिशन की जोड़ी ने एक से बढ़कर एक यादगार गाने हमें दिए, और कल शंकर जी की बर्थ एनिवर्सरी है। अब हम आपको ये बताते हैं कि इन जोड़ी की इनकी शुरुआत कैसे हुई। शंकर जी का पूरा नाम है शंकर सिंह राम सिंह रघुवंशी। शंकर जी है हैदराबाद से, और इनका जो संगीत का शिक्षा है, इनकी संगीत की शिक्षा हैदराबाद में हुई थी। मुंबई जब आए थे शंकर जी, तो उन्होंने पृथ्वी थिएटर ज्वाइन किया, और शंकर जी तबला बजाने में उस्ताद थे। वहाँ पर ये नाटकों में एज अ तबला प्लेयर काम करते थे। अब कहानी में एंट्री होती है जयकिशन जी की। दोनों की मुलाकात गुजराती फिल्म मेकर चंद्रवदन भट्ट के दफ्तर में हुई थी। शंकर जी तबला बजाते थे और जयकिशन जी हारमोनियम उस्ताद थे। दोनों ही संगीत से जुड़े थे, तो दोस्ती होने में वक्त नहीं लगा। कुछ महीनों बाद पृथ्वी थिएटर में हारमोनियम वादक की जरूरत हुई, तो जयकिशन जी को वहां एज अ हारमोनियम वादक रख लिया गया। और इनको फर्स्ट म्यूजिकल ब्रेक कैसे मिला? राज कपूर साहब के उस वक्त म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे राम गांगुली, जिन्होंने उनकी पहली फिल्म आग में म्यूजिक दिया था। और जब राज कपूर साहब बरसात बना रहे थे, तो उस फिल्म में राम गांगुली जी और राज कपूर साहब के कोई क्रिएटिव डिफरेंस हो गए। अब राज कपूर साहब के सामने ये सवाल कि संगीत कौन देगा, तो उन्होंने शंकर जी का रुख किया, पूछा कि शंकर संगीत दोगे? शंकर जी ने कहा हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कोशिश करूंगा। और शंकर जी ने राज साहब से पूछा कि राज साहब वो जो लड़का है जयकिशन हारमोनियम बजाता है, उसे भी साथ ले लूं क्या? राज साहब ने कहा ठीक है देख लो। और जब बरसात का म्यूजिक आया ना, सारे गाने सुपर डुपर हिट हुए, पूरा म्यूजिक एल्बम ब्लॉकबस्टर हुआ। इसके बाद तो हर जगह शंकर जयकिशन का नाम गूंजने लगा। इसके बाद श्री 420, चोरी चोरी, जंगली, अनारी, संगम, ब्रह्मचारी, सूरज, लगभग जिस जिस फिल्मों में शंकर जयकिशन ने संगीत दिया, सभी सुपर हिट रही। नेक्स्ट रिक्वेस्ट मैं प्ले कर रहा हूँ राकेश माथुर जी की। पुणे से है इनकी रिक्वेस्ट, और इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है शंकर जयकिशन जी का रचा हुआ हरियाली और रास्ता फिल्म का टाइटल सॉन्ग। इसके बाद हम प्ले करेंगे किशोर जी की रिक्वेस्ट, थाने से है इनकी रिक्वेस्ट, और इनकी रिक्वेस्ट पे हम प्ले करेंगे रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ताजमहल फिल्म से जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।

0: बात निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी।
1: पगली जीपीएस फॉलो करना, नहीं तो गुम हो जाएगी।
0: अगर गुम हो भी जाओ तो कोई बात नहीं।
1: बिल्कुल, क्योंकि पंछियों के पास भी कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिलें।
0: हाय, ये है एफएम रेनबो 107.1। यूं ही खट्टी मीठी बातों से जीत लेंगे आपका मन,
1: क्योंकि हम हैं म्यूजिकली यर्स।

लिसनर्स, दोपहर के 1:30 होने को है। अब समय है राष्ट्रीय मराठी समाचार का। थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए, उसके बाद पुनः हम जुड़ेंगे हिट एंड हॉट से।

वेलकम बैक टू हिट एंड हॉट, आप सभी का फेवरेट आर रिक्वेस्ट आर ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1 एफएम, म्यूजिकली योर्स। और मैं हूं आपका रेडियो मित्र साकेत आपके साथ। अब चलिए जल्दी से हम अगली रिक्वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। चेतन जी और काजल जी ने हमसे रिक्वेस्ट करा है, बहारो फूल बरसा हो मेरा महबूब आया है। पहली रिक्वेस्ट हम ये प्ले करेंगे, इसके बाद हम प्ले करेंगे टीडी मल्होत्रा जी की रिक्वेस्ट। चंडीगढ़ से इनकी रिक्वेस्ट आई है और इन्होंने हमसे किशोर दा का एक बहुत ही सूदिंग सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है, फिल्म दूर गगन की छाओं से आ चल के तुझे मैं लेके चलूं। यू सेड वी प्लेड, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1 एफएम।

0: Lani FM Rainbow 107.1 MHz.
1: आप सुन रहे हैं हिट एंड हॉट ओनली ऑन 107.1 FM म्यूजिकली योर्स. और आज की आखिरी रिक्वेस्ट हम प्ले कर रहे हैं प्रवीण जी की. इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है अरिजीत की आवाज़ में सतरंगा फ्रॉम द मूवी एनिमल. और इसी के साथ अपने रेडियो मित्र साकेत को दीजिए इजाज़त. खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और सुनते रहिए FM रेनबो 107.1 FM म्यूजिकली योर्स.

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: ये आकाशवाणी का मुंबई केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को है। अब से थोड़े ही क्षण में आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार मिड डे न्यूज, इसके बाद होंगे हिंदी में समाचार। श्रोता कृपया प्रतीक्षा करें।

0: श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे इसकी सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है।
1: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
0: श्री सिंह ने समुद्री आपदा मोचन पर अभ्यास सत्र और ड्रोन रोधी समाधानों पर संयुक्त अध्ययन जैसे पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का सुझाव दिया। श्री सिंह ने चर्चाओं को जारी रखने के लिए संवाद को बढ़ावा देने की बात कही। श्री राजनाथ सिंह ने आसियान देशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों जैसी प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मध्यम शक्ति वाले देशों द्वारा तय नियमों को लागू करने में सहमति, आपसी समझ और साझा हित महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मध्यम शक्ति वाले देशों यानी मिडल पावर से आशय अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले देशों से हैं। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉ जयशंकर ने कहा कि धमकियों के माध्यम से दूसरे देशों पर अपनी शर्तें थोपने का युग समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि विश्व नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान बदलाव को एक अलग प्रकार की व्यवस्था के विकास के रूप में देखा जाना चाहिए।
2: अब हम एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें देशों की हिस्सेदारी बदल रही है और निर्णय लेने में उनकी भूमिका बढ़ रही है। दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इस पर अब अधिक देश सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। यह नई व्यवस्था भले ही पूरी तरह व्यवस्थित न हो और उसमें कुछ उलझने हो, लेकिन यह पुराने अनुभवों, देशों के अपने हितों और व्यवस्था बिगड़ने के संभावित परिणामों की चिंता को ध्यान में रखकर विकसित होगी।
0: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन है और इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 38 विकसित देशों के साथ वरीयता आधारित व्यापार समझौते किए हैं। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना और देश के बाजारों को वैश्विक साझेदारों के लिए खोलना है। श्री गोयल ने कहा कि भारत कनाडा, मेक्सिको, मर्कोसुर, यूरेशिया और कई अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है।
3: भारत को 2014 तक कई देशों के बाजारों में विशेष व्यापारिक पहुंच हासिल थी, जिनकी कुल अर्थव्यवस्था लगभग $10 ट्रिलियन थी। आज भारत के व्यापार समझौतों के दायरे में लगभग $70 ट्रिलियन की संयुक्त अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। हमारा लक्ष्य $115 ट्रिलियन की वैश्विक अर्थव्यवस्था में से $85 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले देशों के बाजारों तक भारत की पहुँच बढ़ाना है।
0: श्री गोयल ने भारत अमेरिका संबंधों पर कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहद महत्वपूर्ण है और राजनीतिक विचारधारा में बदलाव के बावजूद ये और मजबूत होंगे।
3: भारत के संबंध अमेरिका के साथ कई अहम क्षेत्रों में मजबूत हैं। इनमें व्यापार, रक्षा, तकनीक, महत्वपूर्ण खनिजों और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हम कई स्तरों पर अमेरिका के साथ संवाद कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं और आने वाले समय में इनके और मजबूत होने की उम्मीद है।
0: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सतत विनिर्माण के लिए संपूर्ण तंत्र विकसित करना आवश्यक है।
4: मटेरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
5: सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी सामग्री का पूरा तंत्र विकसित करने में काफी समय और मेहनत लगती है, इसलिए भारत में हमें इस दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे। इसमें सामग्री की पहचान और समझ से लेकर उसे संभालने, बनाने, प्रसंस्करण, भंडारण और चिप सहित अन्य विनिर्माण प्रक्रियाओं में इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करना शामिल है। हमारा लक्ष्य ऐसा तंत्र तैयार करना है जो भारत के लिए भी उपयोगी हो और पूरी दुनिया के लिए भी।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 61% से घटकर 55% रह गया है। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूती लाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हो गई है। अगस्त में ये 9.92% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार खनिज तेल, खाद्य पदार्थों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और धातुओं की कीमतों में वृद्धि से थोक मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है। रसायन, कपड़ा, रबड़, प्लास्टिक और बिजली के उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी का भी इसमें योगदान रहा। दिल्ली की विशेष अदालत ने आज सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे सीजेपी नेताओं दास, रांका और अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन से पहले कल हरियाणा के करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसमें कृषि प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रणालियों और पोषण के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर मीडिया से संवाद होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर विजयवाड़ा जाएंगी। वे आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। राष्ट्रपति कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। देश में वर्ष 2015 से 2024 के बीच टीबी के नए मामलों में 21% की कमी दर्ज की गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर ये कमी 12% रही। एक बयान में सरकार ने कहा है कि टीबी के इलाज का दायरा बढ़कर 92% हो गया है, जबकि वैश्विक औसत 78% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारत में टीबी के मामलों में लगातार हो रही कमी यह दर्शाती है कि निरंतर प्रयासों, सामुदायिक भागीदारी और मजबूत जन स्वास्थ्य योजनाओं से सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक 28 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। 20 लाख से ज्यादा लोगों को टीबी से बचाव की दवा दी गई है, जबकि 5,70,000 नए निक्षय मित्र इस अभियान से जुड़ चुके हैं। देश भर के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और ज्यादातर निजी स्वास्थ्य केंद्रों में टीबी की जाँच और इलाज मुफ्त में कराया जाता है। वहीं टीबी के भारत की लड़ाई में लोगों की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जोश पहल की शुरुआत की है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि देश के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को कैसे मजबूत किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला सुरंग इसी संकल्प का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मार्च 2024 को इस सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया था।
4: अरुणाचल प्रदेश में लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग पूर्वी हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में इंजीनियरिंग कौशल की एक बड़ी मिसाल है। लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना में दो सुरंगें हैं जिनकी लंबाई लगभग 1,003 मीटर और 1,595 मीटर है। इस सुरंग का उद्देश्य असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच हर मौसम में बेहतर संपर्क सुनिश्चित करना है। इससे भारी बर्फबारी और खराब मौसम के दौरान भी आवाजाही आसान होगी। सामरिक दृष्टि से ये सुरंग बेहद महत्वपूर्ण है। इससे ऊंचाई पर स्थित सेला दर्रे की चुनौतियों से निपटने और सीमावर्ती क्षेत्र में सेना के जवानों, सैन्य उपकरणों तथा आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुगम बनाने में मदद मिलेगी। इससे सेना की परिचालन तैयारियां भी मजबूत होगी। सुरंग से स्थानीय लोगों

0: को भी लाभ होगा। बेहतर सड़क संपर्क से स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, बाजारों और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी। साथ ही पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सेला सुरंग दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना है। अगले दो दिन में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। ये अभ्यास इस महीने की 2 से 12 तारीख तक आयोजित किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने समुद्री सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, विश्व एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: लड़का लड़की है बराबर, तो पूछना क्यों?
2: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: माझ्या बाईकची नॉकिंग कमी झाली आहे।
4: माझ्या कार मधून आता आधीपेक्षा कमी प्रदूषण होतं।
5: माझं स्कूटर काय मस्त पिकअप देते।
6: गाडी कोणतीही असो, पेट्रोल E20 असेल तर नॉकिंग कमी होतं, प्रदूषण 40% घटते आणि हाय ऑक्टेनमुळे अमेझिंग पिकअप मिळतो। तुमची गाडी E20 साठी 100% सुयोग्य आहे। भारत सरकारचा उपक्रम, तेल विपणन कंपन्यांद्वारे जनहितार्थ जारी।

0: कन्या लाग जी जी कजी जी आदि माया रेनु सब कन्या लाग जी जी कजी जी
1: औरा अटप्पा बांधा खरची लाग औरा अटप्पा बांधा।

ಡೌಳಿ ಪವಳಿ ಬಲಗಾದಿ ನಾಗ ಡೌಳಿ ಪವಳಿ.

नमस्कार, आप सुन रहे आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। 5:07:58 हो चुके हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार सिंह, लेकर पेश हूं कार्यक्रम लव यू जिंदगी। और ये जिंदगी दिन दिन बेहतरीन बेहतर होती जा रही है, ये तो सोचना ही है, ये तो करना ही है, और ऐसा ही होगा। सब कुछ सोचने पर डिपेंड करता है, और उसके बाद उसे कार्यान्वित जब आप करते हैं तो उसका मजा भी कुछ और होता है। सबसे पहला गीत हमने आपको सुनाया श्रेया घोषाल और उस्मान मीर की आवाज में, नगाड़े संग ढोल बाजे, रामलीला फिल्म का गाना था दोस्तों। और मैंने सोचा कि जब मौसम ये चल पड़ा है, फिलहाल नवरात्रि की धूम हर जगह है, और गरबा जो भौतिक विशिष्ट स्थान लिए हुए है गुजरात से लेकर पूरे भारतवर्ष में, और नवरात्रि का मौसम कहते ना कि उपासना, त्यौहार, उपवास और बहुत सारी चीजें एक साथ चलते रहती है, बहुत कुछ मिश्रण लिए हुए आता है त्यौहार। हाय दोस्तों, इसके बाद जो मैं अगला गीत आपको सुनवाता हूँ, लकी अली की आवाज़। ये सेगमेंट में हम अक्सर आपको एल्बम भी सुनाते हैं, लेकिन लकी अली की आवाज़ में सुनाते हैं फिल्म का गीत, फिल्म का नाम है अनजाना अनजानी। और जब मैं शाम के समय, बहुत से लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, बस ऑफिस से निकलने की जल्दी है, और इंतजार क्यों ना हो ऐसे मौसम में, वैसे काम करने का मूड बहुत कम होता है, लेकिन मुंबई शहर

5:13 और 26 सेकंड हो चुके हैं। अभी भी आपने जो गीत सुना, हैरत, फिल्म का नाम अनजान अनजानी, आवाज है लकी अली की। और जब जैसा कि मैंने कहा कि मुंबई शहर में 6 बजे का समय, हम बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं कि भाई कब काम धंधे से निकले और कुछ जिंदगी के दूसरे पड़ाव की ओर जाया जाए। और जो सबसे बड़ा लक्ष्य और सबसे बड़ा टारगेट जो आपको ओवरकम करना पड़ता है, वो आपका ट्रैवल है। तो बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनका वर्क प्लेस और रहने की जगह करीब में हो, वरना लोग अक्सर अमूमन कहते हैं कि अगर 60-70 साल की जिंदगी है तो 10-20 साल तो ट्रैवल में चले जाते हैं। और नवरात्रि का त्यौहार, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे अलग अलग तरीके के आपको कपड़े पहनने हैं, लोगों को उपवास करना है, शाम को लोगों को डांडिया भी जाना है, अपना काम भी करना है। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट हम कर जाते हैं मुंबई वाले ना, और शायद ही कोई कर पाता है। लेकिन 10-20 साल पहले जब ये टाइम लिमिट नहीं हुआ करती थी कि 10 बजे बंद नहीं करना होता था, उस जमाने में भी लोग जब 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड गरबा और डांडिया होता था, 2 बजे 4 बजे लोग ख़त्म करके भी सुबह ऑफिस जाया करते थे। ये प्रोफेशनलिज्म ना मुझे नहीं लगता कहीं और मिलता होगा। ये है सिर्फ एक मुंबई की खासियत। और हम लोग बिना कुछ कंप्लेन किए जिंदगी को जीने का जो एक मज़ा है ना, एक सलीका, मुझे लगता है हम पूरी दुनिया को और भारतवर्ष को सिखा जाते हैं। इसीलिए तो इसे यूं ही माया नगरी नहीं कहते हैं, खास तौर से कमर्शियल टर्म्स में। 107.1 मेगाहर्ट्ज़, मोर बजाना लेस पकाना, सुनाते गाने पे गाना। अगला गीत मोहित चौहान की आवाज़ में, साडा हक।

पांच बजकर 20 मिनट और 58 सेकंड हो चुके हैं। अगला गीत नेशनल अवार्ड विनर वैभव सचदेवा जिन्होंने संगीत दिया, फिल्म का नाम है धुरंधर, खान साहब और शाश्वत सचदेव की आवाज में है। जान से गुजरते हैं, आइए इस गीत को सुनाते हैं और उसके बाद करेंगे कुछ आपके दिल की बातें।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: एसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी एफएम रेनबो।
4: सुनिधि चौहान की आवाज में आपने फिल्म मर्डर से मर्डर 2 का गाना सुना। आज जरा इसके बाद अगला गीत मैं एक और खूबसूरत सा सुनाने जा रहा हूँ, मोहित चौहान की आवाज़ में। ये जवानी है दीवानी से इलाही इस फिल्म का गीत। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि जब त्यौहार बहुत सारे आते हैं और बहुत से लोगों को मन में एक लगता है कि यार बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत सारा खर्चा लगता है, उसका जो कहते हैं ना कि एक आत्मा जो हर त्यौहार की होती है, उससे जुड़ी जो भी रिचुअल्स होते हैं, संस्कृति की बातें होती हैं, जब आप उसमें इंटरेस्ट लेने लगेंगे ना, उसमें जाने की पूरी कोशिश करेंगे और ये क्यों होता है और किस तरीके से पारंपरिक तरीके से जो मनाया जाता है वो बहुत अलग होता है। हमने हर त्यौहार को ना फिर पैसे से कोरिलेट कर दिया है कि ये त्यौहार तो ये खरीदना है, ये त्यौहार तो ये करना है, यानी कि उसको इतना ज़्यादा पैसे का इंपॉर्टेंस बढ़ा दिया है। फिर जब लगता है कि मन मुताबिक पैसे नहीं तो यार त्यौहार में मज़ा नहीं है। अगर आप त्यौहार को पैसे से कोरिलेट करके मनाने की कोशिश करेंगे तो बार बार दुखी होंगे। क्यों आप ऐसा सोचते हैं और ऐसा क्यों होता है और भी सारी बातें, लेकिन सबसे पहले क्योंकि मैं कहता ही हूँ कि मोर बजाना लस पकाना, सुनाता हूँ गाने पे गाना, करेंगे और भी सारी बातें।

0: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

कल दोस्तों जब मैं चंद अपने खास दोस्तों के साथ बैठा था और लगभग बात करते करते 2-2.5 घंटे निकल गए, फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा, यार हमने बात क्या की? या तो हम फोन पे भी थे नहीं थे, बात कर रहे थे, एक दूसरे का हालचाल ले रहे थे। उसके बाद जब हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे तो मालूम पड़ा 2-2.5 घंटे साथ में थे, कोई स्पेशल टॉपिक डिस्कस नहीं किया, एक दूसरे के वेलबींग पूछा, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और बेसिकली 1-2 घंटे आप चैन की सांस ले रहे हैं जहाँ पर आपको कोई जज नहीं कर रहा है, जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं, जहाँ पर क्या बोलना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या जाना है, क्या प्लानिंग करनी, कुछ भी नहीं, यू आर योरसेल्फ। तो आज के ज़माने में जब आप खास दोस्त आपका कोई होता है, आप बैठे हैं, जैसे कहते ना कि वजह होती तो कहते ना बेवजह है तभी तो दोस्ती है, जो पुराने खास दोस्त होते हैं मिलने की वजह नहीं होती। तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा मिलने की कोशिश कीजिए, बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, बहुत सारे सवालों के जवाब बिना सवाल पूछे ही मिल जाते हैं जब एक दूसरे के साथ होते हैं। बैक ऑफ माइंड ये होता है ना कि मेरे साथ मेरा दोस्त खास है, दुनिया यहाँ की वहाँ चली जाए ये तो होने ही वाला है। तो जिनके साथ आपको खाना खाने बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जिनके साथ समय बिताने बहुत अच्छा लगता है, जिनके साथ आप ऊल जुलूल कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी बकवास भी कर सकते हो और एक दूसरे को किसी भी तरह से पुकार सकते हो, वो जो स्ट्रेस रिलीवर स्ट्रेस बस्टर वाला काम करता है ना, वो कोई नहीं कर सकता। लोगों के पास ये इलाज है, उसके बावजूद भी लोग कहते हैं ना कि रिसॉर्ट नहीं करते हैं, कहते हैं कि जो चीज़ फ्री में अवेलेबल उसकी वैल्यू नहीं है, वही हाल है भाई। आप यहाँ जाते हो बहुत सारी चीज़ों में कि यहाँ जाऊँगा बैठूंगा ये करूँगा वो करूँगा बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं, आपको अच्छा लगता है अपने एकदम खास लोगों के साथ बैठ कर। इलाका कोई भी हो, जगह कोई भी हो, खाना कोई भी हो, स्वाद अलग हो जाता है जब वो साथ होते हैं, इसीलिए उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा।

ये कृपया नगमा था फिल्म धुरंधर से। शाश्वत सचदेव की आवाज जस्मिन सैन लास्ट ने साथ दिया था। मैं और तू 5:55 हो चुके हैं और मैं आपसे आप लोगों से कुछ समय पहले कह रहा था किस तरह से जो सबसे अच्छी शामें और सबसे अच्छा समय होता है अपने खास करीबी लोगों के साथ बीतता है जिसमें पैसे नहीं लगते। और एक और ट्रेंड दोस्तों मैंने देखा कि जब हम लोगों ने आजकल कहीं भी आउटिंग सिर्फ कहते ना लॉन्ग वीकेंड से जोड़ के रखा है, बस कैलेंडर में फ्राइडे सैटरडे के साथ कोई छुट्टी जुड़ जाए मंडे को फ्राइडे को, यानी कि फर्ज बनता है कि सबको भैया बोरिया बिस्तर उठा के उसी समय बाहर निकलना है और उस समय मुंबई एकदम अच्छी शांत हो जाती है और जितनी भी शांत प्रिय जगह है वह अशांत हो जाती है। उसी टाइम पे चाहे आप तीर्थ स्थल जा रहे हैं, चाहे किसी रिसॉर्ट में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, पूरी की पूरी भीड़ लकड़े से ट्रांसफर हो गई है। लोग कहते हैं जो कामकाजी कि भाई क्या करें, छुट्टी तो मिलती नहीं है। तो मैंने जब एक मेरे हार्डकोर बिजनेसमैन दोस्त के साथ, जो हालांकि बिजनेस करता है जॉब नहीं करता, तो उसने कैलकुलेट करके बताया कि यार ऐसा है कि अगर वो पेड लीव लेकर भी जाते हैं ना, या मान लीजिए कि उनकी छुट्टियां ख़त्म हो गई है और अगर वो फिर भी नॉर्मल मंडे टू फ्राइडे जाना चाहते हैं और उनके पैसे या तनख्वाह कट जाएगी, वो कहीं सस्ती पड़ती है बनस्बत इसके कि वीकेंड में जाके 4 गुना खर्चा करके आते हैं। 3,000 के कमरे को लोग 10,000 में लेकर आते हैं और जब वो कंपेयर करेंगे कि अगर एब्सेंट मार्क होता था तो कितने पैसे कटते और वो होता तो कितने पैसे कटते हैं, तो मैंने कहा भाई साहब हम इसलिए बिजनेसमैन हैं और हम हर चीज़ कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत बार लोग ये सोच नहीं पाते क्योंकि जिनके साथ जाना चाहते हैं उनका भी पैटर्न नहीं होता है, छुट्टी नहीं है, छुट्टी मिलेगी नहीं और जाना है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन फाइनली होता यही है, चेंज ऑफ लोकेशन हो जाता है और वो जो एक जिस चीज़ से निकल कर जाना चाहते हैं सुकून की तलाश में, और सुकून मिलता नहीं है, मिलेगा भी कहाँ, कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। थॉट प्रोसेस चेंज कीजिए। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहते आता हूँ कि वीकेंड में डिनर पे जाना है, आज आप जाइए मुंबई के किसी भी रेस्टोरेंट में, कहीं कुछ बुकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वॉक इन बहुत अच्छे से स्वागत होगा, अच्छे से खिलाया पिलाया जाएगा और वही फ्राइडे सैटरडे इंतजार में रहते हैं, रुकते हैं, सर्विस खराब हो जाती है, दुगना तिगना दाम दे के आते, चाहे थिएटर हो या कुछ भी हो। धीरे धीरे धीरे धीरे बदलाव लाना शुरू कीजिए। बहुत ही प्यारा सा गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में, फिल्म कारवां का गाना छोटा सा फसाना। और अगर आप लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, खास तौर से इरफान साहब के परफॉर्मेंस के लिए।

लव यू जिंदगी कार्यक्रम के अंत में सबसे आखिरी में गीत आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान और शैल हदा की आवाज में, फिल्म गुजारिश का वो नंबर उड़ी, और इसमें वाकई क्या डांस परफॉर्मेंस किया ऐश्वर्या राय ने, और ये फिल्म भी बहुत ही अलग थी दोस्तों। गुजारिश के बहुत सारे गाने बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सोचने में मजबूर कर देते हैं। उसका टाइटल ट्रैक मैं जरूर आपको कुछ समय के बाद सुनाऊंगा, और बस 6:05 पे होंगे समाचार और 6:15 से हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे लेकर पेश कार्यक्रम अंदाजे बयां।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक दोस्तों, 6:15 और 30 सेकंड हो चुके हैं। ये पल है आपके पसंदीदा कार्यक्रम अंदाज़े बयां का। गीतों का अंदाज बदलेगा, गानों का अंदाज बदलेगा, कुछ बातचीत भी थोड़ी सी ठहराव के साथ होगी। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं राहत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में। ये जो गाना है, फिल्म का नाम इश्किया।

0: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: एक पुरानी बात याद आ गई कि कहने को तो सब अपने हैं, खास कोई नहीं। कहने को तो सब अपने हैं, खास कोई नहीं, उम्मीद तो सबसे है, पास कोई नहीं। यही हाल लगभग 90% लोगों का हो चुका होता है, क्योंकि हर इंसान अपने आप को कहता ना, जब सिंपथाइज करता है कि यार मेरे साथ कोई नहीं, मैं सबका साथ देता हूँ, मेरा कोई साथ देता नहीं। लेकिन कभी कभी हम अपने कहते ना कि अपने आप को हम सही जज कभी कभी नहीं कर पाते हैं। और तीसरा इंसान जब होता ना कि जैसे थर्ड पार्टी ऑडिट होता है, उस तरह से ही हमारा भी थर्ड पार्टी ऑडिट होता है। और जो कोई हमें आईना भी दिखाता है कितनी बार, क्योंकि ह्यूमन नेचर, ह्यूमन फितरत है कि मैं जो कहूँगा सही। हर इंसान को कहते ना कि अपनी फिल्म का हीरो तो वही होता है, लेकिन जब तीसरे की निगाह से देखते हैं बहुत सारी गलतियाँ हम करते नहीं करते हैं, एहसास होता है कभी नहीं होता है। लेकिन जब कोई खास दोस्त होता है वही आपको आईना दिखा सकता है, तो या तो उसकी कद्र करते हैं या उसे भी दूर कर देते हैं। फिर लास्ट में होता है कि भाई अगला भी सोचता है कि मैंने तो तेरी बेहतरी के लिए तुझे कुछ आईना दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं नहीं दिखाऊंगा। तो ऐसे खास लोग आपके पास होते हैं, और जब आप उसकी कदर नहीं करते हैं और जब वो दूर चले जाते हैं, तो पल पल उनकी कदर, उनकी बात याद आती है।

कार्यक्रम का नाम है अंदाजे बयां, तो ये गजल सुनाना तो बनता ही है। आवाज हूँ जगजीत सिंह साहब की, उनकी खास गजल मैं आपको सुनवाता हूँ, अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको। और इसके बाद अरिजीत सिंह की आवाज में शीशोरी फिल्म से मैं आपको सुनाऊंगा खैरियत। फिलहाल सुनते हैं इस गीत को।

अंदाजे बयां कार्यक्रम के अंत में जाते थे, आपको सुनाता हूँ बहुत ही प्यारा सा नगमा। दो गीत थे, वैसे एक छोटा सा गीत है, गजल कह सकते हैं, जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में, तेरे खुशबू में बसे खत। लेकिन दर्दीले आलम में छोड़ने के बजाय मैं चाहता हूँ आपको सुनवाना अरिजीत सिंह की आवाज़ में उस अजनीरे। 7 बजे समाचार और 7:10 से आपका पसंदीदा कार्यक्रम, आपकी फरमाइश 8657 66 1071 पर।

वेलकम बैक दोस्तों, 7:16 और 14 सेकंड हो चुके हैं। आप बने अपने साथी शिव कुमार सिंह के साथ, सुन रहे हैं कार्यक्रम हम तुम, आपका पसंदीदा सेगमेंट जहां पर आप अपनी फरमाइशें दर्ज कराते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की फरमाइशें पूरी की जाए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। सबसे पहले फरमाइश जो थी वो थी, मुंबई से ट्रैवल कर रहे हैं अलंकार, जो पुणे पहुंच चुके और कहते हैं कि इस उमस भरी गर्मी में मुझे एक गीत याद आ रहा था, जैकपॉट फिल्म का गाना कभी जो बादल बरसे, अरिजीत सिंह की आवाज़ थी। अगली फरमाइश आ रही है हैदराबाद से असलम की, वो सुनना चाहते हैं शफाकत अली की आवाज़ में जिंदगी से, फिल्म रास्त्री का बेहतरीन नगमा। इसे संगीत से संवारा है जीत गांगुली ने। 107.1 मेगाहर्ट्ज़ मोर बजाना लस पकाना, सुनाते हैं गाने पे गाना।

अगली फरमाइश है अक्षय की, जो बैंगलोर से सुनना चाहते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में दोबारा। फिल्म का नाम है लूडो और गीत है आबाद बर्बाद। 8657661071 8657661071।

7:27 हो चुके हैं। अगली फरमाइश आई है, क्यों झार से आशुतोष की, वो सुनना चाहते हैं रॉक स्टार फिल्म का गीत मोहित चौहान और सुजैन डी मेलो की आवाज में, तुम हो। आशुतोष जी, क्या गाना पसंद किया आपने। 8657 66 1071।

0: ACP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

अगली फरमाइश है वास्को गोवा से कविता की, और वो सुनना चाहते हैं केदारनाथ का गीत जानिसार, असीस कौर की आवाज़ में फीमेल वर्जन वो सुनना चाहते हैं। ये गीत अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में भी है। कविता जी, सीधे गाना मुंबई से गोवा आपके लिए पहुंच रहा है।

सात बजकर 30 मिनट और 25 सेकंड हो चुके दोस्तों। ऐसे जब गाने चल पड़ते हैं तो वाकई अलग अलग उधर भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग फरमाइशें दर्ज होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर तरफ से। कहते ना संगीत ऐसी चीज है जो सबको जोड़ के रखती है। अगली फरमाइश आई है और अरिजीत सिंह की आवाज में, जिस फिल्म ने उनको सबसे ज्यादा नाम दिया, फिल्म का नाम है आशिकी, मिलने हैं मुझसे आई। और ये फरमाइश आई है मुंबई के बांद्रा इलाके से और शर्ली इनका नाम है और वो बांद्रा में रहती है। रोज सुनना चाहती है अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना और कहती है कि इतने साल होने के बावजूद भी मुझे इस गाने की एक अलग ही कशिश नजर आती है। शर्ली, ये गाना आपके लिए बिल्कुल फ्रॉम टाउन टू बांद्रा 107.1 मेगाहर्ट्ज़ 8657661071 8657661071।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

2025 में इसकी जो चार्ट बस्टर फिल्में हैं ना, दो गानों को मैंने लाइनअप किया। दोनों बहुत ही अलग अंदाज की फिल्में हैं और दोनों ने वाकई क्या सफलता पाई है। सुजीत बंदरेखा की आवाज में मारी बरसी फिल्म धुरंधर का गाना, यह सुनना चाहते हैं अखिलेश लखनऊ से, और उसके बाद राजस्थान के एक इलाके से, उन्होंने गांव का नाम अभी मिस कर दिया, खैर कोई बात नहीं, राजस्थान से भूरमल जी सुनना चाहते हैं सुनील लोधी की आवाज में हनुमान अंश का गीत मैंने तेरे ही भरोसे। सुनील लोधी जी के बारे में अपने सोशल मीडिया के जरिए सुना होगा, नेत्रहीन होने के बावजूद जो उन्होंने गीत गाया है, और इस फिल्म ने भी क्या सफलता पाई है। दो अलग तरह की फिल्में और दोनों के दोनों ने कितना कमाल कर दिया। तो सबसे पहले सुजीत बिंद्राखिया की आवाज में बारी बरसी, फिल्म का नाम है धुरंधर, अखिलेश फ्रॉम लखनऊ से सुनना चाहते हैं, और मैंने तेरे ही भरोसे सुनील लोधी जी की आवाज में ये गाना सुनना चाहते हैं राजस्थान से भूरमल जी।

अगली फरमाइश तो दोस्तों एकदम जबरदस्त है, हालात भी जबरदस्त है। आकाश एक भारतीय जो इस वक्त मॉस्को में है, उन्होंने वहां से फरमाइश की और उन्होंने कहा कि मैंने सुना था लेकिन यहां आने के बाद जब सच में जाना है, इस गाने का जो क्रेज है जिम्मी जिम्मी, और वाकई रशिया में इस गाने को इतने साल 70s का ये गीत और आज भी इतना प्रासंगिक है, लोग आज भी इतने चाव से सुनते हैं सुनाते हैं और मिथुन चक्रवर्ती जी को इतना याद करते हैं। हाल ही में वहां गए थे, उनका बहुत जोरों में सत्कार भी हुआ था, लोग आज तक भूल नहीं पाए हैं। और जब कहा मौका मिलता है तो मैंने सोचा चलो क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि मुझे अगर ऑल इंडिया रेडियो के जरिए जब ये गाना अगर मैं फरमाइश मॉस्को से करके सुन सकता हूँ और यहाँ के अर्शन लोगों को सुना भी सकता हूँ, तो इस वक्त कहते ना चाहते हैं कि बिल्कुल उनका नाम लिया जाए और बताया जाए और ये गाना वो खुद सुनना चाहते हैं। पार्वती खान की आवाज़ में जिम्मी जिम्मी आजा, आकाश ये गाना आपके लिए जा रहा है सीधा यहाँ से मॉस्को।

गाना सुनने के बाद धन्यवाद देने की लिस्ट से बहुत बड़ी लिस्ट है जिनकी नाराजगी कि मेरा गाना आज प्ले क्यों नहीं हुआ। और आप हमेशा नए लोगों का गाना प्ले करते, तो बिल्कुल करता हूँ दोस्तों। कहते ना कि जब घर के लोगों को ऐसी खाना खिला दिया जाता है, मेहमानों का खास स्वागत होता है। तो जो हमारे बहुत ज़ोरदार हार्ड कॉल लिस्टर्स है, जो हर बार हमारा शो मिस नहीं करते, जब उनकी फरमाइश नहीं लगती तो नाराजगी भी जाहिर है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हमें पता है कि हमारे साथ सुनते रहेंगे और नए नए लोगों को भी सुनने का, उनकी फरमाइशें पूरी करने का मौका देंगे। कार्यक्रम के अंत में जाते जाते मैं आपको सुनवा रहा हूँ बप्पी लहरी विशाल ददलानी की आवाज़ में, उसमें आपको नाना पाटेकर जी की बात सुनाई पड़ेगी। टैक्सी नंबर 9211 मुंबई नगरिया, और ये गाना अनिकेत सुनना चाहते हैं दादर से। और ये गाने के साथ साथ तो बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं, और मैंने कहा कोई बात नहीं, अनिकेत पूरा देश इमोशनल हुआ है। हर हाल में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, माँ आपकी सेवा कीजिए। सुनते रहिए FM रेडमो 107.1 मेगाहर्ट्ज़। अपने दोस्त शिव कुमार सिंह को दीजिए इजाजत। 8 बजे से रीटा होंगे आपके साथ, लेकर पेश होंगी कार्यक्रम रॉक बीट जॉक, जो चलेगा रात के ठीक 11 बजे तक। सुनते रहिए FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाया। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड और सहायता दरों में संशोधन। सरकार ने IDBI बैंक के पुनर्गठन और रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति

0: समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचनाओं पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें तुरंत बंद करने को कहा। महाराष्ट्र ने 305 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया। दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी। पैराग्वे में आनंद कुमार वेलकुमार ने विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट में रजत पदक जीत लिया है और हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी।
1: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस है सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस है, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांग जन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है।
2: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, MSMEs को सपोर्ट कर सके, इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक उसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर सेलेक्ट किया गया है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट FDI आने का माध्यम इस निर्णय से बना।
0: मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की है। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है।
1: रेलवे में मैसिव रिक्रूटमेंट चल रहा है, भर्तियां करीब 1,65,000 भर्तियां निकली हुई है जिसपे एग्जाम लगातार चल रहा है। अब तक करीब करीब 37,000 रोजगार पक्की नौकरी दी जा चुकी है रेलवे में इसी पिछले कुछ समय में ही। टोटल अगर 2014 से अब तक की देखें तो करीब 5.5 लाख भर्तियां रेलवे में की गई है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को आर्थिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार कम हिस्सेदारी बनाए रखते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से विकास के अगले चरण को गति दे रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इससे न केवल बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि बैंकिंग सेवाएं वैश्विक मानकों से बढ़कर होंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए

0: प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। श्री मोदी ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को जल्द पूरा करने पर बल दिया। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। इससे पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संबंधी लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह स्वीकार्य हैं और इन्हें फौरन बंद होना चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि रियाद हवाई अड्डे पर हमले के बाद उड़ानों में व्यवधान आया है।
1: भारत और सऊदी अरब के बीच में काफी आवाजाही होती है, लेकिन हमारे जो एम्बेसी हैं वो एयरलाइन से, समुदाय से और जिनको जिस प्रकार का जो भी उनको मदद चाहिए वो करा रही है। और हमारा मानना है कि सिचुएशन अगर बेहतर हो जाए तो लोग वापस आ सकेंगे घर। कुछ जहाज चल रही है, हमारे जो भारतीय जहाज थी उन पे डिस्ट्रप्शन आया है, लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से जो उनके हवाई जहाज की कंपनियां हैं वो फ्लाइट्स चल रही हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र जनसेवा से देश सेवा रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री संग्रहालय ने किस तरह इस दृष्टिकोण को साकार किया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था, जिसमें देश के सभी प्रधानमंत्रियों के काम और देश के विकास में उनके योगदान को दर्शाया गया है। यह संग्रहालय दिखाता है कि कैसे भारतीय लोकतंत्र ने समाज के हर वर्ग के नेताओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के अवसर दिए हैं। दो भवनों में फैला यह आधुनिक डिजिटल संग्रहालय भारत के राजनीतिक इतिहास, लोकतांत्रिक परंपराओं और विकास यात्रा की झलक प्रस्तुत करता है। संग्रहालय में वीरांगनाओं की महागाथा नाम से एक लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया जाता है, जिसमें उन वीर महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियां दिखाई जाती हैं जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इस संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह सभी सरकारों की साझा विरासत और देश के विकास में उनके योगदान का प्रतीक है।
3: देश आज जिस ऊंचाई पर है वहां तक उसे पहुंचाने में स्वतंत्र भारत के बाद बनी प्रत्येक सरकार का योगदान है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है।
2: श्रीलंका के न्यायमूर्ति एस थुरैराजा ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के दौरे के दौरान भारत के लोकतंत्र और देश के विकास में प्रधानमंत्रियों की भूमिका पर अपने विचार साझा किए।
4: हम भारत के मुख्य न्यायाधीश के निमंत्रण पर दिल्ली आए। मैं सोच रहा था कि जाऊं या नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं आता तो बहुत कुछ मिस कर देता। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आयोजक शानदार हैं और निर्देशक तथा वो बच्चे जो हमें गाइड कर रहे थे वे भी बेहद खुश मिजाज हैं।
2: नई दिल्ली के तीन मूर्ति मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय देश के सभी प्रधानमंत्रियों की सोच, नेतृत्व और योगदान को सामने लाकर युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है।
5: हमारे जो लक्ष्य है, उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती, इस धरती को, इस माटी को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना है। हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि अनियंत्रित केमिकल, फर्टिलाइजर, कीटनाशकों का उपयोग करके माटी के स्वास्थ्य खराब कर।
0: महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपये की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। मुंबई में श्री फडणवीस ने कहा कि सूखा राहत रियायतें सभी 305 प्रभावित तालुकों के किसानों तक पहुंचाई जाएंगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उचित उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया है। नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। आनंद कुमार वेलकुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। आनंद कुमार 4 मिलीसेकंड से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। प्रतियोगिता में उन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता है। हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 248 रन का लक्ष्य दिया है। साई होप ने नाबाद 102 रन की पारी खेली। अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और अक्षर पटेल ने एक विकेट लिए। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में शारदीय नवरात्र के दौरान श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर में अब तक 1,80,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाया। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड और सहायता दरों में संशोधन। सरकार ने IDBI बैंक के पुनर्गठन और रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ एक दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचनाओं पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें फौरन बंद करने को कहा। और हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को दिया 248 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
6: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Cabinet approves continuation of National Social Assistance Program for 5 years, revises eligibility criteria and assistance rates for disability pension beneficiaries. Government gives nod to strategic restructuring of IDBI Bank and 78-day bonus for railway employees. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's commitment to building a forward-looking strategic partnership with Canada. Both countries

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 का भुगतान किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी राजनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणजीत जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संधि लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिश्वतखोरी के एक मामले में म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार और 2 अन्य निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने पुणे में आरोपी अधिकारी के ठिकाने से 1,73,00,000 रुपए बरामद किए हैं। इसके अलावा मैसूरू, बेंगलुरु और दिल्ली में आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी ली गई। इस दौरान करीब 50 लाख रुपए नकद और मामले से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। CBI ने कहा है कि मामले की आगे की जांच जारी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। कृषि में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए कल नई दिल्ली में राष्ट्र स्तर पर महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार महिलाएं बुआई, रुपाई, फसल कटाई, पशुपालन और बीज संरक्षण जैसे कई कामों में अहम भूमिका निभाती है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। जोश मलिहाबादी लिखते हैं। वाकई जनाब, बचपन को याद तो कीजिए। वो बचपन जब रात होते ही माँ की गोद हमारा सबसे महफूज आशियाना बन जाती। माँ की आवाज में लोरियां, आसमान में चमकता चांद, चांद पर रहने वाली परियों की बातें और फिर उन परियों की दिलचस्प कहानियां। हम उन कहानियों को सुनते सुनते ख्वाबों की एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते जहां हर मुश्किल का हल हुआ करता था।

हर कहानी का जो अंत था, हर कहानी का जो आखिर था, उसमें खुशियां ही खुशियां हुआ करती थी। वक्त बदल गया, हम बड़े हो गए, मगर माँ की आवाज, उन कहानियों का जादू और बचपन की वो मासूम रातें आज भी दिल के किसी कोने में महफूज हैं। आज भी चांद तो आसमान पर निकलता है, लेकिन न जाने क्यों उससे वो लगाव नहीं रहा। परियां उस वक्त लगा करती थी कि हाँ सची तो हैं, ऐसी परियां होती हैं। और अब कब नींद आ जाती है बिना चांद की बातों के, बिना परियों की बातों के, पता ही नहीं चलता। माँ काश वो होती तो कोई बात कहती, कोई कहानी सुनाती। सच्चाई के करीब होती हैं ढेर सारी बातें।

माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो ना हो रानी, जिसमें खुशियां ही खुशियां हों, चेहरे पर मुस्कुराहटे हों, जिंदगी की हकीकत से रूबरू कराती सीजर रॉय की इस आवाज में ये तख्लीक वाकई दिल को छू जाती है। बहरहाल बचपन की बातें हैं और बचपन में ये लोरियां बड़ी अच्छी लगती हैं। बचपन की मासूमियत धीरे धीरे उम्र के तजुर्बों में ढल जाती है और फिर दिल में उठने वाले जज्बात गजल की शक्ल ले लेते हैं, और शायरों ने भी इस सफर को अपने अल्फाज में बहुत ही खूबसूरती के साथ डाला है। कहीं बचपन की यादों का जिक्र किया तो कई बार जवानी के ख्वाब भी दिखा डाले, कहीं मोहब्बत की पहली दस्तक तो कहीं वक्त के साथ बिछड़ते रिश्तों का दर्द। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। जी हाँ जनाब, यही है जिंदगी की हकीकत, कब आगे बढ़ जाती है हमें पता ही नहीं चलता, और हम एक मुलाकात चाहने लगते हैं। उस पल का हमें इंतजार रहता है जो इस दिल में कहीं सांसें लेने लग जाता है।

इधर जो देखें सलाम कर लें, बेशक ये सलाम भी जनाब नज़र से होता है, ये सलाम भी उन्हीं को होता है जिनसे ये दिल मोहब्बत रखता है। और यकीन मानिए, जब हम गज़लों की बात करते हैं, शायरी की बात करते हैं, तो हर एक शायर अपने अंदाज में अपनी बात कहना जानता है। और कमाल की बात यह है कि हर एक शायर की जो बात है वो बिल्कुल अलग नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि जो जिस सोच का मालिक होता है वो वैसे ही सोचता है। वो कहते हैं कि तुम मुझसे रूठ जाओ ऐसा कभी ना करना, मैं एक नज़र को तरसूं ऐसा कभी ना करना, मैं पूछ पूछ हारूं सौ सौ सवाल करके, तुमको जवाब ना दो ऐसा कभी ना करना, तुम चांद बन के रहना मैं देखता रहूंगा, किसी रोज तुम ना निकलो ऐसा कभी ना करना, तुम चले जाओ जब भी तो देखें तेरा रास्ता, तुम लौट के ना आओ ऐसा कभी ना करना, मुझसे ही मिल के रोना मुझसे ही मिल के हंसना, मुझसे बिछड़ के जी जाओ ऐसा कभी ना करना, तुम मुझसे रूठ जाओ ऐसा कभी ना करना, मैं एक नज़र को तरसूं ऐसा कभी ना करना, क्योंकि इसको कहते हैं प्यार, इसी को कहते हैं इश्क। और आपने देखा, हर एक शायर अपने नज़रिए से मोहब्बत को देखता है।

0: और पंकज उदास को सुनने के बाद याद आ रहा है वो शेर, तशखीस बजा है मुझे इश्क हुआ है, तशखीस बजा है मुझे इश्क हुआ है, नुस्खे में लिखो उससे मुलाकात मुसलसल। तो ये जो मुलाकात है ये मुसलसल आपके साथ रहेगी। हाजिर होती हूँ चंद ही लम्हों में, एक छोटा सा ब्रेक।
1: लड़का लड़की है बराबर तो पूछना क्यों, पूछना क्यों।
2: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
4: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
3: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
5: भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और प्रोग्राम है रंगी महफिल। रंगी महफिल में बात हो रही है मोहब्बत की, रंगी महफिल में बात हो रही है जिंदगी की, जो न जाने कितने पड़ाव के साथ आगे बढ़ती रहती है। गुजरा हुआ वक्त हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, जिंदगी का जो वो लम्हा होता है जिसमें इंसान किसी को अपना दिल दे बैठता है, वो लम्हा सबसे ज्यादा खूबसूरत हुआ करता है और इंसान उसमें खो सजाता है।

दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। ये जो लव से जाना है ये इंसान को मोहब्बत करना सिखाता है, ये इंसान को शायरी से मोहब्बत कराता है। और ख़ास बात यह है कि अपने होने का एहसास होता है कि हाँ हम भी कुछ हैं। और आप सब लोग जो हमारे साथी हैं हमारे साथ हैं। शुभ संध्या, शुभ रात्रि मैम, 9 बजे से 10 बजे तक भी कार्यक्रम सुना अच्छा था। और राजेश भल्ला एडवोकेट कंकरखेड़ा मेरठ से।

हमारे साथ हैं। लौटकर बचपन के जमाने नहीं आते। जी हाँ जनाब, आपने सही लिखा है, जो गुजर गया वो लौटेगा नहीं, लेकिन हाँ हम उसे याद कर सकते हैं। और आदाब, उफ आज माँ की याद आ गई, और वही वक्त याद आ गया जब माँ रात को कहानियाँ सुनाया करती। काश वो लम्हे एक बार फिर, सिर्फ एक बार, काश ऐसा होता। और अब तो ख्वाब और ख्याल बनकर रह गए हैं। रेनबो के सभी आरजेस को हम शुक्रगुजार हैं, हमारे खोए हुए पलों को याद दिलाते हैं। कस्बा गुनौरी को पीछे फारूक अली खान, फैजी फराज, परीन फरहान, फारिया और ताहिरा। बिल्कुल आपने सही लिखा है, कभी भी बचपन लौट के नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि अपने दिल में एक बच्चा जो रहता है उसे कभी मरने मत दीजिएगा, उसे हमेशा जिंदा रखिएगा, तरोताज़ा रखिएगा। यकीनन आपकी उम्र में इजाफा होगा, आप बहुत अच्छे मिजाज के इंसान रहेंगे। शर्त यह है कि उस बच्चे को सुनिए, उस बच्चे का ख्याल रखिए जो आपके दिल में जिंदा है। और अमरावती महाराष्ट्र से पंकज हैं, लिखते हैं, कार्यक्रम रंगे महफिल में बहुत बढ़िया कार्यक्रम प्रस्तुति, गीत बहुत अच्छे हैं, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो ना हो रानी, बहुत बढ़िया। सलाम करने की आरजू है, इधर जो देखें सलाम कर लूँ, उमराव जान। चलिए आप हमें लिखकर भेज देते हैं, हमारा ही प्ले किया हुआ, तो चलिए आपको पसंद आता है और हमें क्या चाहिए इसके लिए। थैंक यू सो मच। और मैम, योर टॉकिंग इज़ वेरी मीनिंगफुल ओनली फॉर मी, थैंक्स। और प्लीज़ कन्वे माई मैसेज टू डियर फ्रेंड आकाश। तो आकाश, आप जहाँ भी हैं प्लीज़ आप तुम्बा से बात कीजिए, क्योंकि वो अपने आप को बहुत लोनली महसूस करती हैं, लेकिन जनाब हम आपके साथ हैं और आकाशवाणी का रेनबो चैनल आप सबके साथ है। आप क्यों उदास हैं, हमारे साथ रहिए। और सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी एक बार फिर हमारे साथ प्रोग्राम रंगे महफिल में अब हैं साथ, और लिखते हैं कि वेरी हैप्पी एंड हेल्दी वेंसडे, गुड इवनिंग एंड नाइट, वी आर लिसनिंग प्रोग्राम रंगे महफिल, एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन एंड एवरग्रीन गजल्स, योर बिग थैंक्स फॉर वंडरफुल प्रोग्राम्स। और जनाब आपका भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं, थैंक यू कहना चाहेंगे। और ये जो आप लिखते हैं ना, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, ये बहुत अच्छी बात है, और मैं भी आपसे कहना चाहूँगी गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू। और इसके अलावा हमारे साथ कौन है, हमारे साथ देखिए जनाब, ये बली मारान से नवाब अहमद भारती साहब लिखते हैं, मुझे ये बहुत पसंद है और मज़ा आ गया पहली गज़ल सुनकर, मुझे ये गज़ल बहुत पसंद आई है, दौलत भी ले लो शोहरत भी ले लो। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में ये गज़ल, बिल्कुल आपने सही लिखा है। और एक मुझे बहुत पसंद है, उस मोड़ से शुरू करें, बिल्कुल बहुत अच्छी गज़ल है ये, लेकिन आज तो मैं प्ले नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ इंशाल्लाह अगले हफ्ते जब हम आपसे मुलाकात करेंगे तब हम ये गज़ल ज़रूर आप तक सुनवाएंगे। और माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, ये आपको अच्छी लगी इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा सुना सकें, कुछ बेहतर सुना सकें, और आप के मैार पर भी ये गज़लें पूरी उतर सकें, ये वाकई हमें अच्छा लगता है। बाकी आपने हमें कुछ गज़लें लिखकर भेजी हैं, तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम आपकी पसंद का, अपने सभी लिसनर्स की पसंद का ख्याल रख सकें। बहुत शुक्रिया नवाब अहमद भारती साहब, ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और प्रोग्राम जैसा भी आपको लगता है अच्छा लगता है या नहीं भी अच्छा लगता है तब भी आप हमें बता सकते हैं। और बबलू कश्यप हैं मंगोलपुरी से, लिखते हैं प्रोग्राम बेहद पसंद आया, थैंक यू सो मच। और मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि आप सब बड़े दिनों के बाद हमसे जुड़े हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, जो हमारे पुराने पुराने लिसनर्स हैं, वो भी प्रोग्राम सुनते हैं, तो दिल बड़ा खुश हो जाता है कि सब अभी हम एक साथ हैं और सुन रहे हैं, और एक साथ रहना भी चाहिए हम सबको। थैंक यू सो मच। और अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, गज़ल का टाइम और बढ़ाया जाए, वरुण लिखते हैं इंदौर से। ठीक है जनाब, आपकी बात, आपकी जो एप्लीकेशन है वो पहुंच चुकी है, और जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन तक भी आप ज़रूर पहुंचाइएगा ये बात, और देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, और हम तो बस अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ अच्छा हो, कुछ बेहतर हो। ठीक है, तो चलिए, बातें तो हम और भी करना चाहते थे, लेकिन जनाब वक्त का इशारा है कि मैं आपसे यहीं इजाज़त ले लूँ, वादा कर लूँ एक और मुलाकात का। तो मुलाकात की जहाँ तक बात है, तो भाई मुलाकात तो होनी ही चाहिए, और ये जो मुलाकात का वक्त है
इसे कभी आप ज़ाया मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो मुलाकातों का वक्त होता है ना, ये भी बहुत कम हुआ करता है। जब हम मुलाकात करते हैं तो हम सोचते नहीं कि हमें क्या बात करनी होगी, लेकिन जैसे जैसे मुलाकात का वक्त आगे बढ़ जाता है तब हमें लगता है कि काश ये कहा होता, काश वो कहा होता, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ती ही जाती है। वो कहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी के राज में एक राज तुम भी हो, मेरी ज़िंदगी के राज में एक राज तुम भी हो, मेरी ख्वाहिश की आस में एक आस तुम भी हो। तुम क्या हो मेरे लिए, कुछ हो या कुछ भी नहीं, मगर मेरी ज़िंदगी के काश में एक काश तुम भी हो। अब आप सोचिए कि एक शायर कितनी गहरी बात लिख जाता है, और ये सारी ही बातें हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं। क्यों तो अच्छा लगता है वक्त मिला तो सोचेंगे, तुझ में क्या क्या देखा है वक्त मिला तो सोचेंगे, तू क्यों इतना अच्छा लगता है वक्त मिला तो सोचेंगे। मौसम, खुशबू, बाद सबा, चांद, शफक और तारों में कौन तुम्हारे जैसा है वक्त मिला तो सोचेंगे। अब आप सोचिए जनाब कि एक शायर कितने सारे खूबसूरत अल्फाज को एक साथ यकजा करके गज़ल में उतारने की पूरी कोशिश करता है, और ये गज़ल हम तक पहुंचाता है, क्योंकि ये सारी ही गज़लें, ये सारी ही शायरी हमारे ज़िंदगी के बेहद करीब होती है। तो शायरी को समझिए, शायरी को पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शायरी ही हमें मोहब्बत से रूशनास कराती है। और जब इस दिल में किसी के लिए मोहब्बत होती है, किसी के लिए अपनापन होता है, तो हम न सिर्फ एक शख्स से मोहब्बत रखते हैं, बल्कि आसपास के हमारे जितने भी लोग होते हैं उनसे भी मोहब्बत रखते हैं। इंसानियत और हमारा जो एक बिहेवियर होता है वो बेहद खूबसूरत हो जाता है। तो बस इन सब बातों का आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरती के साथ ख्याल रखिए, क्योंकि हम सबको ही इस शमा को हमेशा रोशन करना है, और ये शमा है मोहब्बत की, ये शमा है इश्क की। किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना हो, लेकिन अलबत्ता इस चीज़ की ज़रूरत ज़रूर होगी। तो चलिए, अब जाने का वक्त मेरा बेहद नज़दीक आ गया है। एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आदिल कमर गुन्नौर साहब का, गुन्नौर से जो हमें लिखते हैं, बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगता है आप लोग सुनते हैं, प्रोग्राम पसंद करते हैं। नवाब अहमद भारती का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और इसके अलावा हमारे साथ कौन जुड़ चुका है, ये सीमा है, सीमा लिखते हैं कि पूरा प्रोग्राम इनको बेहद पसंद आया, चलिए अच्छा लगा आपको, और हमें क्या चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और वादा करती हूँ एक और मुलाकात का, जल्द मिलेंगे, ढेर सारी बातें आपके साथ करेंगे, लेकिन आपको भी वादा करना होगा, जैसा कि मैंने अभी कहा, मोहब्बत के चिराग हमेशा रोशन रखिएगा, क्योंकि इस दुनिया को सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की ज़रूरत है, अपनेपन की ज़रूरत है, और अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिएगा, क्योंकि जनाब जब आप अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखते हैं तो न सिर्फ आप मुस्कुराते हैं, बल्कि आपको देखकर दूसरों को मुस्कुराने का सबब मिल जाता है। इसी के साथ चलती हूँ, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा।

रात्रि के 12 बज चुके हैं। एफएम रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी। आईडीबीआई बैंक के पुनर्गठन को मंजूरी दी। इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों का 78 डेज का बोनस देने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर 3 दिवसीय संयुक्त अरब अमीरात यूएई दौरे पर हैं। इस दौरान डॉ जयशंकर भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा के लिए अपने समकक्ष से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। भारत और ब्रुनेई के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज नई दिल्ली में संयुक्त व्यापार समिति की 3री बैठक हुई। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचना पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इसे तुरंत बंद करने को कहा। इजराइल रक्षा बलों ने गाजा शहर में हमास के कमांडर को मार गिराने का दावा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। भारतीय नौसेना ने आज बहरीन की राजधानी मनामा में आयोजित समारोह में बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा बल के संयुक्त टास्क फोर्स 154 की 8 महीने की कमान पूरी कर सौंपी। रक्षा मंत्रालय ने इसे समुद्री सुरक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत के बढ़ते योगदान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। कृषि में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। हैदराबाद में चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हराया। और मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

रात के 12:03 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप गाने जीरो आर शो में। तो बस गानों की दुनिया में ऐसे खो जाइए और अनुपम रॉय की आवाज में सुनिए फ्रॉम द मूवी पीकू से ये गाना और गानों की लड़ी शुरू होती है अब।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
2: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और शो का नाम है जीरो आर शो, जिसमें नॉन स्टॉप गानों का आप मजा ले रहे हैं। रात के 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार और अभी शो का ये आखिरी गाना।

बहुत ही खूबसूरत शो के लिए धन्यवाद पंकज। जीरोड्स के बाद अब हम बढ़ चुके हैं सुहानी रात की तरफ और मौसम भी सुहाना है तो प्रोग्राम भी सुहाना ही होगा, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी परंपरा जो हम निभा ही रहे हैं और वो है इस घंटे के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी। IDBI बैंक के पुनर्गठन को मंजूरी दी। इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्रों में इस संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 3 दिवसीय संयुक्त अरब अमीरात UAE के दौरे पर हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भारत UAE व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा के लिए अपने समकक्ष से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। भारत और ब्रुनेई के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज नई दिल्ली में संयुक्त व्यापार समिति की तीसरी बैठक हुई। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचना पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इसे तुरंत बंद करने को कहा। इसराइल रक्षा बलों ने गाजा शहर में हमास के कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। भारतीय नौसेना ने आज बहरीन की राजधानी मनामा में आयोजित समारोह में बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा बल की संयुक्त टास्क फोर्स 154 की 8 महीने की कमान पूरी करके सौंपी। रक्षा मंत्रालय ने इसे समुद्री सुरक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत के बढ़ते योगदान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। कृषि में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। हैदराबाद में चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में

वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हराया। और मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आप जुड़ चुके मेरे साथ कार्यक्रम सुहानी रात में। मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम में 90 के दशक और आसपास को आपको याद दिलाने कुछ खूबसूरत गीतों की सौगात लेकर रजत। आप सभी का स्वागत इस कार्यक्रम में। इसके अलावा आप हमसे जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे सभी प्रोग्राम्स के लिए और इस शो के लिए भी जिसका नाम है सुहानी रात मेरे यानी रजत के साथ एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर एज वेल एज ऑन न्यूज़ ऑन एयर ऐप। तो जुड़ जाइए, आप सभी का स्वागत इस खूबसूरत प्रोग्राम में।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए। ये मुमकिन है, इसी का कर्म

रात के 2 बज चुके हैं। एफएम रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी। IDBI बैंक के पुनर्गठन को मंजूरी दी। इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर 3 दिवसीय संयुक्त अरब अमीरात UAE दौरे पर हैं। इस दौरान डॉ. जयशंकर भारत UAE व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा के लिए अपने समकक्ष से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। भारत और ब्रुनेई के बीच

व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज नई दिल्ली में संयुक्त व्यापार समिति की तीसरी बैठक हुई। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचना पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इसे तुरंत बंद करने को कहा। इजराइल रक्षा बलों ने गाजा शहर में हमास के एक कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। भारतीय नौसेना ने आज बहरीन की राजधानी मनामा में आयोजित समारोह में बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा बल की संयुक्त टास्क फोर्स 154 की 8 महीने की कमान पूरी कर सौंपी। रक्षा मंत्रालय ने इसे समुद्री सुरक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत के बढ़ते योगदान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। कृषि में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। हैदराबाद में चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हराया। और मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

रात के 2:03 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप गाने कार्यक्रम भुलाए ना बने में, जिसमें आप वो गानों का मजा लेंगे जिन्हें आप किसी टाइम पर बहुत सुनते थे, फिर समय के साथ उन गानों को भूल गए, लेकिन उन्हीं गानों को अब आप दोबारा गुनगुनाएंगे इस शो में भुलाए ना बने में। तो गानों की शुरुआत होती है और बस ऐसे ही गाने सुनिए और गानों की दुनिया में खो जाइए।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

एक और शानदार प्रोग्राम के बाद, एक बहुत ही बढ़िया शो के बाद, अब हम आ चुके हैं वहाँ जहाँ घड़ी की सुई ने इशारा कर दिया कि 3 बज चुके हैं और वक्त हो चला है अगले प्रोग्राम का। लेकिन उससे भी पहले समय है अब तक के मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी गई है। IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा रेलवे कर्मियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर 3 दिन के संयुक्त अरब अमीरात UAE दौरे पर हैं। इस दौरान डॉ. जयशंकर भारत UAE व्यापक रणनीति साझेदारी की प्रगति की समीक्षा के लिए अपने समकक्ष से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। भारत और ब्रुनेई के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज नई दिल्ली में संयुक्त व्यापार समिति की 3री बैठक हुई। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचना पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इसे तुरंत बंद करने को कहा। इसराइल रक्षा बलों ने गाजा शहर में हमास के कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। भारतीय नौसेना ने आज बहरीन की राजधानी मनामा में आयोजित समारोह में बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा बल की संयुक्त टास्क फोर्स 154 की 8 महीने की कमान पूरी कर सौंपी। रक्षा मंत्रालय ने इसे समुद्री सुरक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत के बढ़ते योगदान की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। कृषि में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। हैदराबाद में 4थे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हराया। और मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 में। कुछ ही पल में हाजिर हैं हम प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज लेकर इन्हीं फ्रीक्वेंसीज पर। और इसके अलावा आप जुड़े हैं हमारे साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी, देश और दुनिया के हर हिस्से और तमाम कोनों तक हमारे प्रोग्राम पहुंचते हैं और आप इसे कहीं से भी सुन सकते हैं, हमारे किसी भी शो को सुन सकते हैं, बशर्ते आपके डिवाइस में हमारी ऐप हो, न्यूज़ ऑन एयर ऐप। अगर अभी तक नहीं है तो इसे डाउनलोड कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, हमारे सभी खूबसूरत प्रोग्राम्स के साथ। फिलहाल वक्त हो चला है मिडनाइट मेलोडीज का, खूबसूरत गानों और सदाबहार गानों के इस खूबसूरत सम्मेलन में आप सभी का स्वागत, मेरे यानी रजत के साथ बस कुछ ही देर में।

0: मोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल,

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

सुबह के 4 बज चुके हैं। एफएम रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी। आईडीबीआई बैंक के पुनर्गठन को मंजूरी दी। इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों को 78 डेज का बोनस देने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत और ब्रुनेई के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कल नई दिल्ली में संयुक्त व्यापार समिति की 3री बैठक हुई। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचना पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इसे तुरंत बंद करने को कहा। इजराइल रक्षा बलों ने गाजा शहर में हमास के कमांडर को मार गिराने का दावा किया। भारतीय नौसेना ने आज बहरीन की राजधानी मनामा में आयोजित समारोह में बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा बल की संयुक्त टास्क फोर्स 154 की 8 महीने की कमान पूरी कर सौंपी। रक्षा मंत्रालय ने इसे समुद्री सुरक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत के बढ़ते योगदान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। कृषि में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। हैदराबाद में चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हराया। और मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। सुबह के 4:03 हुए हैं और अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप गाने कार्यक्रम सारेगामा में। तो गानों की शुरुआत करते हैं फ्रॉम द मूवी मिशन मजनू से जुबिन नौटियाल की आवाज में, और इसके साथ ही गानों की लड़ी शुरू होती है अब।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

बागों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज में अक्टूबर फिल्म से गाना। शो का नाम है सारेगामा, जिसमें आप नॉनस्टॉप गानों का मजा ले रहे हैं। सुबह के 4:55 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और सारेगामा शो का ये आखिरी गाना। और फिर उसके बाद सुबह 5 बजे होंगे हिंदी में समाचार।

धन्यवाद पंकज। समय हो चुका है ठीक 5 बजे घड़ी के मुताबिक, और घड़ी इंगित कर रही है कि सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएं इस घंटे के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी। IDBI बैंक के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत और ब्रुनेई के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कल नई दिल्ली में संयुक्त व्यापार समिति की 3री बैठक हुई। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचना पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें तुरंत बंद करने को कहा। इजरायली सुरक्षा बलों ने गाजा शहर में हमास के कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। भारतीय नौसेना ने आज बहरीन की राजधानी मनामा में आयोजित समारोह